मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तने मैं शशि हाजिर होइयो कार्यक्रम लेकर माती दी महक तशुतों कर दिन अपने कार्यक्रम दी शुरुआत इस प्यारे दे गीते करने तो तुहां सारे इन्हें सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

दर्शकों तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दिया गीत तो फिर ते आपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते आहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दिया गीत तो तुहां सारे भी सुना कने इन्ने सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 मेगाहर्ट्स पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। ता कार्यक्रम च फिरी अहां अगे बढ़ने जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिरी ते एक गीत संगीत दी तरफ ले चल देने।

दर्शकों तुम सारे ही सुने प्यारा दिया गीत तो फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सै फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनते निक प्यारा दिया गीत तो तुम सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये तो हाँ सारे अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला आशोता तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने तो हाँ सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम तशोता फिर यहाँ तो हम ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तो हाँ भी सुना कने नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। दर्शो तो तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से इत्थे संपन्न होंदा है तो तुहां सारे अपनी रेडियो दोस्त शशि जी दी अनुमति कन्ने सुनदे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँगी। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट करते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 MHz पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोतो, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

0: तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।
1: तेरी आंखों का जादू

91.2 FM पर आप सभी कार्यक्रम सुन रहे थे गीत सुहाने नए पुराने अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब

0: लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
3: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
3: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
3: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर, वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
5: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: यार इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सब से कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
8: ताला।
7: क्या?
8: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
7: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
8: चलो।

दोस्तों, जिंदगी की सच्चाई जिससे अक्सर हम अपना मुंह मोड़ते हैं, सफर भी छूट जाएगा, शहर भी छूट जाएगा, जहां पैदा हुए हैं हम वो दर भी छूट जाएगा। जिस आंगन में खेलते कूदते बड़े होते हैं हम, एक दिन वो आंगन भी छूट जाएगा। कभी सोचते नहीं हम कि एक दिन चलते फिरते ये जहां भी छूट जाएगा। गम किसका करना जिंदगी में, क्या तू लाया था और क्या तू ले जाएगा। इबादत कर उस खुदा की ये बंदे, वो ही तुझे तेरे असली मुकाम पे लेकर जाएगा। नमस्कार दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है।

नमस्ते दोस्तों, और इस बहुत ही प्यारी सी शुरुआत के साथ आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और कैसी रही आज की सुबह की शुरुआत और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सुबह की शुरुआत भी बहुत अच्छी रही है और अपनी सेहत का ध्यान भी आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। खुद का तो रख ही रहे हैं, लेकिन खुद के साथ साथ अपनों का ध्यान भी आप सभी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ आइए इस प्यारे से सफर में बढ़ते हैं आगे की ओर, ढेर सारी जानकारियों के साथ, ढेर सारी बातों के साथ। 16 जून 2026 का दिन, इस प्यारी सी शुरुआत एक नए पल के साथ, नए अंदाज के साथ, नई खुशी के साथ, उत्साह के साथ। हर पल की शुरुआत एक एनर्जी और उत्साह के साथ होनी चाहिए, और साथ ही ईमानदारी के साथ, क्योंकि जो लोग झूठ फरेब का सहारा लेते हैं एक न एक दिन उन्हें जिंदगी में पछताना पड़ता है। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि सच्चाई की राह पे ही जिंदगी में आगे की ओर बढ़िए। फिलहाल हमें भी कार्यक्रम में आगे की ओर बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों ये बातचीत का सफर है और अब ढेर सारी बातें आप सभी तक पहुंचने वाली हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हम आगे की ओर बढ़ेंगे। धीरे धीरे एक एक बात को जानेंगे, एक एक जानकारी को जानेंगे, एक एक खासियत को जानेंगे आज के दिन की। लेकिन फिलहाल बातचीत के साथ साथ शुरुआत करते हैं मनोरंजन की भी। तो आइए दोस्तों इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का ये प्यारा सा खूबसूरत सा गीत और शुरुआत कर देते हैं इस प्यारे से सफर की।

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी ने एंजॉय किया अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और रुख करते हैं कार्यक्रम में मौसम की ओर।

जी दोस्तों, तो इस समय धर्मशाला का तापमान लगभग जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और आंखों देखा हाल अगर आप सभी को बताएं तो हल्की हल्की ठंड के साथ जो है ये गर्मियों का एंजॉय आप सभी ले रहे हैं और धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि अब मानसून जो है वो भी दस्तक देने वाले हैं। जी दोस्तों, ज़रूरत भी होती है अब लोगों को, खेती का काम फिर से शुरू होने वाला है यानी कि धान की बिजाई शुरू होने वाली है, ऊर लगाना ये वो सो, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत तो ज़रूर रहती है और इस बार शायद ऐसा लगता नहीं है कि पानी की कमी हो खेतों के लिए। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि रात को सारे लोग खेतों में पानी इकट्ठा करने के लिए लगा देते हैं और फिर दिन में जाके कहीं काम हो पाता था। अगर पिछले एक दो सालों की हम बात करें तो थोड़ा मुश्किल हो गई थी क्योंकि बारिशें नहीं हो रही थी और उस वजह से थोड़ी ज़्यादा परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही थी। खैर, इसके पीछे रीजंस तो खैर बहुत सारे होंगे और हो सकता है कि हम इंसानों की गलतियाँ ही इसके पीछे रीजंस हैं जो कि हम प्रकृति को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ये मानसून में परिवर्तन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर अभी भी हम नहीं सुधरेंगे, अभी भी हम अपने हरकतों पर थोड़ी सी लगाम नहीं लगाएंगे तो न जाने आने वाला समय किस तरह से हमें परेशानियों में डालेगा या डालने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों, ये तो आंखों देखा हाल है और इसी के साथ हम बात करें मौसम विभाग की, तो हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट बदल दी है। जी दोस्तों, सोमवार को भी राजधानी सहित पूरे प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। मंगलवार यानी कि आज से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के पूर्व अनुमान के अनुसार प्रदेश में पूरे सप्ताह मौसम का मिजाज बदला बदला सा रहेगा। 16 से 21 जून तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि 18 और 19 जून को कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। जी दोस्तों, 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के कुछ क्षेत्रों में जो है वो इस तरह से बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं और 19 को भी चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में मौसम जो है वो इसी तरह से रहने की संभावना है। तो बिल्कुल सतर्कता हमारे हाथों में है, सावधानी हमारे हाथों में है, जानबूझकर अपनी ज़िंदगी को किसी भी जोखिम में ना डालना ये भी हमारे हाथों में है, तो ज़रूर इस बात का ध्यान रखिए। और आइए इसी के साथ एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, क्योंकि ये बातचीत के साथ साथ मनोरंजन का सफ़र है और इस सफ़र में जब तक गीत संगीत आप सभी के कानों तक ना पहुँचे तो कहीं ना कहीं हर बात अधूरी है, हर कार्यक्रम अधूरा है। तो बिल्कुल एंजॉय कीजिए अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से कार्यक्रम का ये अगला प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

0: सो कुमार सानू और अलका याग्निक के आवाजों के साथ आप सभी एंजॉय कर रहे थे इस प्यारे से गीत को। बिल्कुल दोस्तों, मनोरंजन इसी तरह से जारी रहेगा और ये बातचीत का सफर भी इसी तरह से जारी रहेगा। लेकिन आज बहुत ही खास एक दिन भी है, आज के दिन की खासियत है, तो जरूर इस पे थोड़ा सा नजर दौड़ाइए कि क्या खास बात है। तब तक समय है प्रादेशिक समाचारों का, तो आइए दोस्तों सुनते हैं समाचार, उसके बाद वापस लौटते हैं अपनी इस बहुत ही खास बातचीत के साथ, मनोरंजन के साथ।
1: चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी में जागरूकता शिविर आयोजित और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से औपचारिक रूप से शुरू होने जा रहा है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना

0: कार्य किया जाएगा। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे शिमला जिला संवाददाता।
1: जनगणना निदेशालय के अनुसार प्रदेश के सभी जिलों में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 13 जून तक पूरा हो चुका है। स्वगणना की ऑनलाइन विंडो 15 जून रात 12 बजे बंद हो गई है। अब आज 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक प्रगणक घर घर जाकर मकान व परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह जानकारी देश के विकास योजनाओं के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। निदेशालय ने लोगों से अपील की है कि वे इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग दें। सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए घर आने वाले प्रगणक के पहचान पत्र पर लगे QR कोड को स्कैन करके उसकी पहचान जरूर जांचें। जिन लोगों ने पहले ही ऑनलाइन पोर्टल पर स्वगणना कर दी है, उन्हें प्रगणक के आने पर सिर्फ स्वगणना ID देनी होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता व राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे सेवाएं, सुशासन और जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। धर्मशाला में कल आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि देश ने पहली बार गरीब कल्याण और तीव्र विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ते देखा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे के विकास और विस्तार के लिए 2,911 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल को मिला ये बजट पूर्ववर्ती सरकारों की तुलना में 27 गुना अधिक है, जिससे राज्य की रेल कनेक्टिविटी और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
2: तो रेलवे के डेवलपमेंट को लेकर ऑन एन एवरेज कांग्रेस के शासन काल में 108 करोड़ रुपए के आसपास का डिवोल्यूशन आता था। इस वर्ष एक बड़े प्रयास के चलते हुए सरकार ने 29,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, ताकि रेलवे के नेटवर्क को हिमाचल में उत्कृष्ट कोटि का और विश्व स्तर का बनाया जा सके। केंद्र की सरकार ने इन 12 वर्षों में पूरे भारत के लिए और यहाँ हिमाचल के लिए अनेक सराहनीय और महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
0: भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक और प्रशासनिक रूप से नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास के मोर्चे पर अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया बीते कल से शुरू हो गई है। राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष गेहूं के समर्थन मूल्य में 20 रुपए की बढ़ोतरी कर 80 रुपए प्रति किलोग्राम के मूल्य से खरीद की जा रही है, जिससे किसानों में भारी उत्साह है। इस वर्ष कृषि विभाग ने चंबा जिला में 175 किसानों से कुल 134 क्विंटल प्राकृतिक गेहूं की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। शिमला जिला के जुब्बल में युवा मंडल मंढोल द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक विशेष पहल की जा रही है, जिसके तहत यहां आयोजित ग्रामीण स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विशेष अतिथियों सहित हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी को बान और देवदार जैसे पेड़ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट किए जा रहे हैं। युवा मंडल मंढोल के अध्यक्ष बॉबी जस्टा ने बताया कि स्मृति चिन्ह के रूप में पेड़ प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वृक्षारोपण के साथ ही इन पेड़ों की देखरेख और संरक्षण भी करेंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल से क्रिकेट प्रतियोगिता के दौरान लगभग 150 से अधिक पेड़ों को रोपा जा चुका है, जबकि बीते वर्ष भी युवा मंडल की पहल से लगभग 1,000 से ज्यादा देवदार वृक्षों का रोपण किया गया था। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पधर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे मंडी जिला संवाददाता।
3: भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बंदर में एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना और नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में उप मंडलाधिकारी पद्धर सुरजीत सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेते हुए कहा कि नशा आज समाज और विशेषकर युवा पीढ़ी के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने तथा अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। शिविर के दौरान प्रशिक्षुओं ने चित्रकला, स्लोगन लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने नशा मुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का संकल्प लिया। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीष सूद।
0: हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र की दिवांशी शर्मा भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बनी है। दिवांशी की इस उपलब्धि से क्षेत्र में खुशी की लहर है। दिवांशी ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर ये उपलब्धि हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उनकी सफलता पर विभिन्न सामाजिक व क्षेत्रीय संगठनों ने शुभकामनाएं दी है। दिवांशी के पिता NTPC में कार्यरत है, जबकि दादा डॉक्टर OP शर्मा हिमाचल गौरव पुरस्कार से सम्मानित है। प्रदेश में बीते कल मौसम के करवट बदलने से कई जिलों में बारिश हुई और वहीं ओलावृष्टि से भी विभिन्न क्षेत्रों में नुकसान के समाचार है। किन्नौर जिला के निचार उपमंडल की रूपी वैली और शिमला जिला के चौपाल और रामपुर क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि से सेब की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं इन क्षेत्रों में स्टोन फ्रूट के साथ ही मटर और अन्य नकदी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में दिन की शुरुआत खिली धूप के साथ हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। विभाग ने 18 और 19 जून को प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिए बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, नगर निकायों में विधायकों का वोटिंग अधिकार बहाल। अमर उजाला और दिव्य हिमाचल ने खबर को एक जैसा शीर्षक दिया है। इनके शब्द है, नगर निकाय अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में वोट डाल सकेंगे विधायक। मैदानों में हुई बारिश, ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और गिरे ओले, शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, तापमान भी गिरा, प्रदेश में 18 जून तक खराब रहेगा मौसम। दैनिक जागरण ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को शीर्षक दिया है, CBSE स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण आज से। इस चरण में मकानों की गणना होगा का। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर इसे जन कल्याण का स्वर्णिम काल बताया। चंबा जिला में आत्मा परियोजना के तहत प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंडी में जागरूकता शिविर आयोजित। और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज से अगले 6 दिनों तक प्रदेश में हल्की बारिश होने की संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAK+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक हॉस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा,

दोस्तों समाचारों और इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम इस समय आप सभी एंजॉय कर रहे हैं और अपने दिन की शुरुआत को और भी प्यारा और भी खूबसूरत आप सभी बना रहे हैं कुछ खास बातों के साथ, कुछ खास जानकारियों के साथ और सबसे खास बात बिना समय की बर्बादी के साथ। जी दोस्तों, फोन हम चलाते हैं तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है। सारे काम जो है वो पेंडिंग रह जाते हैं और हाथों में रहता है तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन। और रील्स को स्क्रॉल करते करते बस हम यही बोलते हैं कि सिर्फ 5 मिनट के लिए हम फोन चलाएंगे, लेकिन स्क्रॉल करते करते कब 5 से 10, 10 से 15, 15 से 30 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन जब समय हाथों से निकल जाता है फिर हम सोचते हैं कि इतनी देर हमने ऐसे गवा दिया, इतनी देर में कुछ ना कुछ काम हो जाता। लेकिन ये फ़ोन की एडिक्शन ऐसी है ना दोस्तों, ये जो एक लत है ना हमें लगी हुई, सारे काम रह जाते हैं अधूरे के अधूरे, फिर चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं। लेकिन ज़्यादातर ब्लेम जो किया जाता है वो बच्चों को किया जाता है। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो हर कोई इस लत में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है। सारे काम साइड में रख कर फोन की अहमियत सबसे ज्यादा। दोस्तों कहते हैं कि अकड़ तो मुर्दे की पहचान है, जो झुक जाए वही

असली इंसान है। जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ही फलदार होगा। इंसान जितना विनम्र होगा उसका कद उतना ही बड़ा होगा। जिंदगी ने एक बात तो जरूर सिखाई है, यहां कोई किसी का नहीं होता। जब तक मतलब है तब तक हर कोई अपना है या हर कोई अपना होता है, साथ देते हैं। लेकिन इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो गुस्सा हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। बस यही सोच में डिफरेंस है। हमेशा अकड़ के साथ जिंदगी नहीं जी जाती, इंसान को थोड़ा झुकना भी पड़ता है। लेकिन झुकने का मतलब ये नहीं है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं गिर गई। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हर जगह नहीं, कुछ सिचुएशंस में हमें झुकना पड़ता है। तो ज़रूर दोस्तों, अगर झुकने से रिश्ते संभलते हैं या बचाए जा सकते हैं, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पे नहीं। जहां आपको लगता है कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, जहां आपकी कोई कद्र नहीं करता, वहां आप उस अकड़ को बरकरार रखिए। लेकिन जहां बहुत खास या बहुत अपने जो कुछ खास लोग होते हैं, वहां अगर आपको झुकना पड़े तो ज़रूर झुकिए। ज़िंदगी में खुद से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन खुद को भी ज़रूरत होती है रिश्ते नातों के। तो फिलहाल आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। और आज का दिन बहुत खास है दोस्तों, प्रकृति की हम बात करते हैं, टूरिस्ट प्लेस हमारा ये धर्मशाला की बात करें या कांगड़ा की बात करें, तो दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, प्रकृति के इस सुंदर से नज़ारे को देखने आते हैं। लेकिन हम अपने इस सुंदर से नज़ारे को किस तरह से बचा रहे हैं, किस तरह से इसे सुरक्षित रख रहे हैं, इसकी देखभाल कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल हमारे पास होना चाहिए, हर एक इंसान के पास होना चाहिए। तो आज का दिन क्यों खास है, जानिए, सोचिए, समझिए और फिर बताते हैं आप सभी को कि क्यों खास है और क्यों इसकी अहमियत को इतना हमें समझना चाहिए।

0: माय इंग्लिश थोड़ा थोड़ा
1: थोड़ा थोड़ा
2: दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गुड मॉर्निंग धर्मशाला कार्यक्रम के साथ आप सभी अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। और दोस्तों, आज 16 जून 2026 का दिन है, तो क्या खास बात है आज के दिन की? जरा उन इतिहास के पन्नों को पलट कर देखिए और उस गहराई को समझने और जानने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, क्यों हम हर दिन को खास बनाते हैं, क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अक्सर वो सेलिब्रेशन उसी दिन तक सीमित क्यों रह जाता है? उस खासियत की अहमियत हमारी जिंदगी में हर दिन क्यों नहीं रहती? क्यों हर दिन के लिए हम अपना योगदान उसमें देने के लिए बोझ समझने लग जाते हैं? दोस्तों, आज के दिन आप सभी मना रहे हैं इंटरनेशनल वाटरफॉल डे। हर साल 16 जून को मनाया जाता है और आज के दिन यानी कि मंगलवार को ये खास दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस दिन का उद्देश्य दुनिया के सबसे खूबसूरत प्राकृतिक झरनों के संरक्षण, पारिस्थितिक महत्व और उनके पर्यटन के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। तो धर्मशाला की हम बात करें तो यहाँ भी ये प्यारा सा नज़ारा जरूर आप सभी इंजॉय करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो है हमारा यहाँ तो जरूर घूमने आते हैं, लेकिन हम उनके संरक्षण के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपना योगदान दे रहे हैं? तो लोगों को ये जागरूकता बढ़ाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम जो भी दिन मनाते हैं तो उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर बात को पहुंचाया जाए, हर जानकारी को पहुंचाया जाए। सावधानी हो, सतर्कता हो या फिर कुछ भी हो, अक्सर हम सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ हमारा स्वार्थ होता है वहाँ हम रिश्ते बनाते हैं, वहाँ हम काम करते हैं, वहाँ हम हर चीज़ को अहमियत देते हैं, लेकिन जहाँ हमारा कोई मतलब नहीं होता, कोई स्वार्थ पूरा नहीं होता, वहाँ हम ठेस पहुँचाते हैं लोगों को। फिर चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, कोई भी हो, जहाँ हमारे एक स्वार्थ की लिमिट पूरी हो जाती है, हमारा मतलब पूरा हो जाता है, हम नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते। प्रकृति की ही बात करें दोस्तों, अब ये जो खास दिन हम बना रहे हैं वाटरफॉल डे जो है, तो ये भी हमारी प्रकृति का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी जगह जो है हमारे शहर को, हमारे गाँव को और भी ज़्यादा खूबसूरत और लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव सा प्लेस बनाती हैं। दूर दूर से लोग आपके वहाँ घूमने आते हैं, है ना, और बहुत सारी यादें जो है वहाँ से लेकर जाते हैं और देकर भी जाते हैं। तो बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, लेकिन नुकसान अगर हम जानबूझकर पहुँचाएं तो वो बात गलत है। नुकसान यहाँ वहाँ हम गंदगी फैलाते हैं, वो फिर चाहे टूरिस्ट हो, चाहे फिर हम आम लोग हों, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उस प्लेस को साफ सुथरा रखें जहां हम घूमने जा रहे हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। वहां की सुंदरता को बनाए रखने के लिए हम अपना पूरा योगदान दें कि प्रकृति हमें इतना खूबसूरत नज़ारा दे रही है, तो हमारा भी तो एक दायित्व बनता है, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी उस प्रकृति को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएं और ज़्यादा उसे साफ सुथरा रखें। तो ज़रूर दोस्तों, ये दिन सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं होते हैं, हमारे अंदर की जो एक जागरूकता है उसे और ज़्यादा उजागर करने के लिए होते हैं। हम दूसरों को नहीं बोल सकते, लेकिन खुद हम अपनी तरफ से अगर कूड़ा कचरा ना फैलाएं, हर एक इंसान में ये सोच आ जाए तो हमें किसी को बोलने की ज़रूरत शायद ना पड़े। तो ये जागरूकता, ये मोटिवेशन हर इंसान को अपने अंदर लानी चाहिए। तो इसी बात के साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं इस प्यारे से खूबसूरत से गीत को।

91.1 में लव्ड ओमेगा हर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार आप सभी फिर से जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए दोस्तों, इस सफर को और भी आगे बढ़ाते हैं, और भी प्यारा खूबसूरत बनाते हैं और लेकर आते हैं आप सभी तक कुछ जानकारियाँ जी दोस्तों। तो आइए जानते हैं बहुत ही खास जानकारी, और ये जानकारी इतनी राहत भरी है दोस्तों कि शायद हर कोई जो है सुकून की सांस ले पाएगा इस बहुत ही खास जानकारी के साथ। क्योंकि कुछ समय से, या यूं कहें कि काफी समय से, इस जानकारी की वजह से सभी लोग परेशान हैं दोस्तों। पश्चिमी एशिया में 107 दिन से जारी युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं। दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक समारोह में इस पर हस्ताक्षर करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर जो है इस संबंध में लिखा कि ईरान के इस्लामी गणराज्य के साथ समझौता अब संपन्न हो चुका है, सभी को इस बात की बधाई उन्होंने दी जी दोस्तों। तो इसके साथ ही जो है किस किस फील्ड में हमें राहत मिलने वाली है, शेयर बाजार में सुधार, रुपए को मिलेगी मजबूती, एलपीजी सिलेंडर होंगे सस्ते जो कि कुछ समय से बहुत ही महंगाई की ओर जो है वो जा रहे थे, और पेट्रोल डीजल में भी होगी राहत, वो भी उसके दाम भी बहुत आसमान तक पहुंच चुके थे, और उर्वरक की किल्लत मिटेगी, हवाई सफर होगा सस्ता। तो देखिए दोस्तों, एक युद्ध के कारण कितनी सारी परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही थी, फेस करनी पड़ रही थी। तो सोचिए दोस्तों, बाहर इतनी बड़ी बड़ी बातें और हम लोग आपस में ही उलझे हैं, आपस में ही एक दूसरे के साथ जो है वो बैर भाव करते नहीं थक रहे हैं, एक छोटे से मनमुटाव को लेकर कभी किसी की जान के दुश्मन बन

जा रहे हैं तो कभी न जाने क्या क्या। तो सोचिए, अगर हम अपने देश में एकजुट ही नहीं है तो हम बाहर किसी के साथ कैसे लड़ेंगे, हम कैसे उस जागरूकता को लेकर आएंगे, कैसे अपने देश को मजबूत बनाएंगे जब हम आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो बाहर वाले तो फायदा उठाएंगे ना इस वीकनेस का, क्योंकि दुश्मन कभी भी दोस्तों एक छोटी सी वीकनेस ही पकड़ते हैं। अगर आपकी एक भी वीकनेस उनके हाथों में आ गई तो वो उसी पे वार करेंगे। तो ऐसे में हमें बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। और वैसे भी अगर हिमाचल की बात करें, कांगड़ा की बात करें, तो यहाँ के लोग तो वैसे ही बहुत अपनेपन के साथ जीते हैं, बहुत ही प्यार के साथ जीते हैं। तो फिर ये लड़ाई झगड़े क्यों इतने ज़्यादा फैल रहे हैं? क्या सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इस पे है? ये सोशल मीडिया हेल्प कर रहा है इनको सोल्व करने में? लेकिन दोस्तों ये जितने हम देख रहे हैं उतने बढ़ते ही जा रहे हैं। न जाने कौन किसको ऐसे ही जान से मार दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा। जैसे किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं रही है आज की दुनिया में लोगों की नज़रों में। तो क्यों ये क्राइम इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस पे सोच विचार करना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। तो ज़रूर दोस्तों इस पे ध्यान दीजिए और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ों को बढ़ाने के बजाय उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि यही जिंदगी का नाम है और इसी को जिंदगी कहते हैं। तो फिलहाल आइए दोस्तों इसी के साथ हम भी कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और इंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। दोस्तों, कहते हैं कि मर्यादा में रहकर भी अगर आत्मसम्मान ना मिले तो चुप रहना गुण नहीं, कमजोरी बन जाता है। हर बार जो है वो झुकना संस्कार नहीं होता। सहनशीलता का मतलब अपमान सहना नहीं है। जहाँ इज्जत नहीं वहाँ रुकना जरूरी भी नहीं। कभी कभी सीमाएं लांघना विद्रोह नहीं, आत्मरक्षा होता है। और हाँ, कभी कभी खुद को चुन लेना ही सबसे सही निर्णय होता है। जी दोस्तों, अक्सर अगर हम लड़कियों की या महिलाओं की बात करें तो वो अपने आप को बहुत कम चुन पाती हैं। वो हमेशा दूसरों की खुशी को सबसे पहले चुनती हैं और अपने आप को हमेशा बाद में। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपने स्वार्थ के चलते सिर्फ अपने आप को चुनती हैं, लेकिन हाँ, बहुत सी अगर हम बात करें तो दूसरों की पहले उन्हें खुशी का ध्यान होता है और खुद का वो बाद में। खास करके बच्चों और अपने हस्बैंड की बात हो, पति की बात हो, तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर होता है। लेकिन आज के समय में दोस्तों, हमें आवाज़ उठाना, क्योंकि कहते हैं ना, हम जितना डरते हैं उतना ही हमें दबाया जाता है। क्योंकि पता होता है लोगों को कि ये बोलेंगे तो है नहीं कुछ भी। क्योंकि एक लड़की को ये दिमाग में डाली जाती है बात कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो समाज में इंसल्ट होगी, इज्जत नहीं रहेगी, ये वो सो पता नहीं क्या क्या बातें। तो उन्हें अपने मायके के बारे में सोचकर जो है थोड़ा सा डर जो है उनके मन में रहता है कि हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। इसीलिए कहते हैं कि आज के समय में सेल्फ इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक महिला सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो अपना वर्क भी संभालती हैं, वो अपने घर को भी संभालती हैं, चाहे वो खाने से लेकर कि कोई भी काम हो, और साथ में हाथ बटाने के लिए उनका परिवार उनके साथ होता है। लेकिन कई बार हम जब नहीं बोलते हैं, हम चुप्पी साध लेते हैं, तो फिर हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं। सोचिए दोस्तों, जब हम डिपेंड होते हैं तो एक दवाई तक लेने के लिए भी हम खुद नहीं जा पाते हैं। हम दूसरों के सहारे, जब तक वो नहीं जाएंगे, भले ही हमारी जाते जाते जान चली जाए, लेकिन हम खुद नहीं जा पाते। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है दूसरों पे डिपेंड रहने का। ऐसा नहीं है कि घर पे हम किसी से बिना पूछे हर कुछ करें, लेकिन हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ों के लिए हमें अपने आप पे निर्भर होना बेहद ज़रूरी है। तो ज़रूर अपने आप को चुनना गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ, स्वार्थ के चलते अगर आप चुनेंगे तो शायद गलत बात है। तो दोनों में फर्क है और ये फर्क आप सभी शायद बहुत अच्छे से जानते हैं।

दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों अपनी डेली रूटीन के साथ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला, अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और बहुत ही खास आज का दिन आप सभी सेलिब्रेट कर रहे हैं जी दोस्तों, वाटरफॉल डे। आज के दिन खासियत के साथ, अहमियत के साथ, प्रकृति के इस सुंदर नज़ारे के साथ दोस्तों, इन प्यारी प्यारी सी धौलाधार की पहाड़ियों के साथ जब हमारी सुबह की शुरुआत होती है तो कितना सुकून और कितनी शांति मन को मिलती है। और कितने खुशनसीब हैं हम कि हम इन प्यारी सी हिमाचल की पहाड़ियों में बसते हैं। और साथ ही ये खुशनसीबी हमारे हाथों में कर्तव्य की भी है, जो कि मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि इन्हें संरक्षित करना, इन्हें सुरक्षित रखना हमारा दायित्व है। क्या आपने कभी गौर किया है दोस्तों कि झरने के पास जाते ही मूड एकदम से फ्रेश क्यों हो जाता है? जब पानी तेजी से पत्थरों पर गिरता है तो हवा में नेगेटिव आयंस जो होते हैं वो पैदा होते हैं, यानी कि नेगेटिव लॉन्स। ये आयंस हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का हैप्पी हार्मोन जो है वो बढ़ाते हैं, जिससे कि हमें खुशी महसूस होती है, हमें सुकून महसूस होता है, जिससे तनाव और डिप्रेशन कहीं ना कहीं कम होते जाते हैं। तो दोस्तों, तनाव और डिप्रेशन तो आज की डेट में युवाओं की बात करें, बच्चों की बात करें या बड़ों की भी बात करें तो हर कोई कहीं ना कहीं तनाव से जूझ रहा है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर एक भी छुट्टी का दिन हो तो हमें ज़रूर अपने परिवार के साथ जो है वो कहीं पिकनिक पे निकलना चाहिए। लेकिन इस बदलते मौसम के साथ हमें थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि पानी का बहाव कब एकदम से बढ़ जाए हम नहीं जान पाते हैं। तो इसलिए सुरक्षा के साथ, सतर्कता के साथ हर पल को एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी जान को सेफ रखकर। दोस्तों, झरने सिर्फ देखने में सुंदर नहीं होते, ऊंचाई से गिरने की वजह से पानी में भरपूर ऑक्सीजन जो है वो घुल जाती है, जो नदी के पानी को साफ रखती है और जलीय जीवों को जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी होती है। दुनिया भर में लाखों लोगों की रोजी रोटी इन वाटरफॉल्स से जुड़े टूरिज्म से चलती है। ये ट्रैकर्स, फोटोग्राफर्स और नेचर लवर्स की पसंदीदा जगह होती है, और ये आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, खास करके धर्मशाला की मैं बात करूं, क्योंकि भागसू वाटरफॉल कितना प्यारा सा नज़ारा, साथ ही मंदिर भी है अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो कितना प्यारा सा नज़ारा होता है दोस्तों। और जब पानी के जो वो झरना है वो गिरता है तो वो सचमुच, जब हम जैसे जैसे उसके पास जाते हैं वैसे वैसे मन को एक सुकून और बहुत ही ऐसे शांति सी महसूस होती है। जो भी परेशानियां मन में चल रही होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं, एक उलझन से हम बाहर निकलते हैं। तो ज़रूर दोस्तों, ये प्रकृति की देन है हम सभी के लिए फ्री में, तो इसे सुरक्षित और सेफ रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने शहर को या शहर की अहमियत को बढ़ाने के लिए, ताकि दूर दूर से लोग यहाँ घूमने भी आए और कुछ खास और प्यारी प्यारी सी यादें हमारे शहर से अपने साथ अपने शहर में लेकर जाएं या अपने देश में लेकर जाएं या अपने गांव में लेकर जाएं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी जानते हैं धर्मशाला एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं। और अभी हम बात करें क्रिकेट, जो इस साल काफ़ी जो है उत्साह रहा क्रिकेट को लेकर, तो बहुत दूर दूर से लोग घूमने भी आए, इंजॉय भी किया खूब सारा। तो हमारी ये खूबसूरत सी प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, और बदले में हमें भी प्रकृति को देना चाहिए सिर्फ एक सेफ वातावरण जी दोस्तों। तो आइए एंजॉय करते हैं इसी के साथ कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

दोस्तों मुकेश की आवाज में आप सभी ने एंजॉय किया उपहार मूवी का ये बहुत ही प्यारा सा मीठा सा खूबसूरत सा गीत। आइए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और बहुत ही खास बातचीत आज के कार्यक्रम में आप सभी एंजॉय कर रहे हैं। प्रकृति की बात हर जुबा हर एक से सुनने को आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए योगदान की बात हम करें तो शायद हर कोई पीछे हट जाता है। पेड़ों के काटने की बात करें तो हर कोई अपने स्वार्थ के लिए अपनी ज़रूरतों के लिए मानते हैं ज़रूरत है, लेकिन साथ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि अगर हम 10 पेड़ काट रहे हैं तो ज़्यादा नहीं, अगर 2 पेड़ भी लगा दें हैं और उसकी पूरे मन से केयर करते हैं बड़ा करते हैं उन्हें तो आप स्वार्थी बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि प्रकृति से ले रहे हैं तो दे भी रहे हैं। यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और यही हमारा योगदान प्रकृति के लिए है। ना ज़्यादा उसमें पैसे लगाओगे, एक छोटा सा पेड़ पौधा ही तो लगाना है दोस्तों, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अपने शानदार पहाड़ों के साथ साथ कई खूबसूरत और प्रसिद्ध झरनों के लिए जाना जाता है। जी दोस्तों, ये प्रमुख झरने ट्रैकिंग का रोमांच और प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का बेहतरीन संगम जो है वो हमारे सामने पेश करते हैं। और कुछ अगर हम प्रसिद्ध और आकर्षक झरनों की बात करें हिमाचल प्रदेश के, जोगिनी जलप्रपात यानी कि जोगिनी वाटरफॉल मनाली, ये मनाली से लगभग जो है थोड़ी ही दूरी में वशिष्ठ गांव के पास है और ये झरना चीड़ के जंगलों यानी कि पाइन के जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग कुछ समय और एक बेहद खूबसूरत और आसान सा ट्रैकिंग करने को मिलती है। और धर्मशाला की बात करें तो भागसुनाग कैसे भूल सकते हैं। जी दोस्तों, भागसुनाग मंदिर के पास जो है मैक्लोडगंज में ये झरना आप सभी इंजॉय करते हैं इस प्यारे से नज़ारे को, और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है ये। झरने के रास्ते में कई शानदार कैफे और बैठने के लिए जगह हैं जहां आप अपने समय को या अपने सफ़र को और भी प्यारा और आकर्षित बनाते हैं। तो दोस्तों और भी जानेंगे और भी खूबसूरत से इन प्यारे प्यारे से आकर्षित झरनों के बारे में कि कहां कहां हैं जहां आप घूम सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं और इस प्रकृति के प्यारे से नज़ारे का लुत्फ उठा सकते हैं। फिलहाल इंजॉय कीजिए कार्यक्रम का एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत। आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर, आप सभी की अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की तरफ से।

दोस्तों इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और आप सभी को फिर से लेकर चलते हैं कार्यक्रम में जानकारियों की ओर। जी दोस्तों, चुनावी माहौल जैसे ही ठंडा हुआ है और अभी जो है वो शपथ का समय चल रहा है। जी दोस्तों, फिर वो चाहे प्रधान, उप प्रधान या फिर किसी भी फील्ड में, तो सभी इस और जो है वो बिजी हैं। दोस्तों, हिमाचल सरकार निर्विरोध चुनी गई पंचायतों को सहमति से पंच परमेश्वर चुनने के लिए इनाम देगी। ये इनाम राशि इन पंचायतों में विकास कार्यों पर ही खर्च होनी है और ये राशि पंचायतों को मिलने वाली विकास कार्यों की राशि के अतिरिक्त होगी। हिमाचल प्रदेश में करवाए गए पंचायत चुनावों 137 पंचायतों में निर्विरोध पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं। इन पंचायतों को बतौर इनाम सुखू सरकार कुल 34 करोड़ 25 लाख रुपए विकास कार्यों के लिए उपलब्ध करवाएगी। इसका खुलासा पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने किया। उनका कहना है कि पंचायतों को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों में कई सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। निर्विरोध चुनने पर प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। जी दोस्तों, तो इस बार आप सभी ने चुनाव के समय में ये देखा ही है कि बहुत सारी पंचायतों ने निर्विरोध जो है अपने प्रत्याशियों को चुना है, तो ऐसे में जो है सरकार उन पंचायतों को इनाम देने जा रही है एक विकास के तौर पे, पंचायत के विकास के तौर पे, है ना। तो ये भी बहुत जरूरी है और बहुत खास है। देखिए दोस्तों,

दोस्तों, इस प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के साथ समय है एक और ब्रेक का। जी दोस्तों, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद फिर से बातें और जानकारियां आप सभी तक बहुत ही खास खास पहुंचाने को अभी बाकी है। जी दोस्तों, तो आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की और फिर से मुलाकात करते हैं आप सभी के साथ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर, भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं। तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी, कॉलेज रोड, सिविल लाइन, धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा,

दोस्तों, इस छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी जुड़ चुके हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। आप सभी ने ट्यून किया है 91.2 MHz पर अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला। और आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि आज के दिन आप सभी मना रहे हैं इंटरनेशनल वाटरफॉल डे। तो दोस्तों, ये जो झरने होते हैं, जिस तरह से हमें सुकून देते हैं, जिस सुकून के लिए अक्सर हम यहाँ वहाँ भागते हैं, तो ये सुकून हमें प्रकृति की गोद में कहीं ना कहीं मिलता है। तो ज़रूर प्रकृति की तरफ ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि दिन मनाने का उद्देश्य जागरूकता और खुद को मोटिवेट करने का होता है। ये नहीं कि उत्साह के साथ आज के दिन आपने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ का नाम तक नहीं लिया। उसी तरह से हम जो है ज़िंदगी को एक नेचुरल वे में जीते चले गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो उत्साह आज के दिन है, इस बात को लेकर, अपनी प्रकृति को लेकर, हर दिन अपनी ज़िंदगी में इस बात का योगदान ज़रूर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि वक्त के साथ चलते चलते कुछ बातें बड़ी साफ नजर आने लगती हैं। हर बहस जितना जरूरी नहीं, हर रिश्ते को निभाना जरूरी नहीं, हर किसी को खुश रखना मुमकिन नहीं। बस एक बात समझ आ जाती है, जियो और जीने दो। जो साथ चलना चाहें उनका हाथ थाम लो, और जो दूर जाना चाहें उन्हें दुआओं के साथ दूर जाने दें। किसी को परेशान करके, किसी की ज़िंदगी में ताका झांकी करके, या किसी को ब्लेम करके हम ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। ज़िंदगी जिस तरह से हमें जिस भी रास्ते पर लेकर जा रही है, ईमानदारी और सच्चाई और एक साफ चरित्र के साथ जो हमें उसी तरह से आगे की ओर बढ़ना चाहिए। किसी को दर्द पहुंचाएंगे तो एक न एक दिन वो कर्म हमारे वापस हम तक जरूर आएंगे, और हमें न जाने उस दर्द का कितना गुना जो है दर्द चुकाना पड़े। हो सकता है कि हमें उससे ज्यादा उसकी कीमत चुकानी पड़े। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए दोस्तों, जिंदगी में अपने भी मिलते हैं और दुश्मन भी मिलते हैं, और कई बार तो अपनों के चेहरों के पीछे ही दुश्मन छिपे बैठे होते हैं। तो हम किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते आज के समय में, और ख़ास करके ये लड़के या लड़कियां, यानी कि युवाओं के लिए ये मैसेज रहेगा कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे अननोन पर्सन को जगह मत दीजिए, या इतनी अहमियत मत दीजिए कि आगे आने वाले समय में उस बात पे आपको पछतावा हो, उस पल पे आपको पछतावा हो, और फिर हाथों में सिर्फ पछतावा ही रह जाए। दोस्तों, चेहरे पे चेहरा लेकर घूमते हैं लोग, तो ऐसे में खुद की सेफ्टी हमारे हाथों में है। हम जितना लोगों से बचेंगे उतना ही हम अपनी ज़िंदगी को सेव कर सकेंगे। तो कभी भी अननोन पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी की कुछ खास बातें शेयर मत कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में वो उसी को जरिया बना के, उसी को माध्यम बना के न जाने आपको ब्लैकमेल करें, या किस तरह से ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोकें। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा इंसान मत बनिए कि किसी को दुख हो, पछतावा हो कि काश वो इंसान हमारी ज़िंदगी में कभी जुड़ता ही ना। एक बुरा सबक बनकर कभी भी किसी की ज़िंदगी में दस्तक मत दीजिए। अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़िए, अच्छाई के साथ आगे बढ़िए। जिसको साथ रहना होगा वो साथ रहेगा, जिसको नहीं रहना है वो ना रहे, क्योंकि ज़बरदस्ती के रिश्ते कुछ समय के लिए ही टिक पाते हैं। रिश्तों में प्यार और अपनापन बेहद ज़रूरी है। तो उसी तरह से फिलहाल हमारे कार्यक्रम में प्यारा सा गीत बेहद ज़रूरी है, तो आइए एंजॉय करते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा सा गीत आप सभी के लिए, आप सभी के अपने अपने रेडियो सेट पर।

0: दिन आए बहारों के, दिन आए बहारों के, मिल गए रब सजदे।
1: दोस्तों मोहम्मद अजीज, सुरेश वाडकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों के साथ आप सभी ने एंजॉय किया कार्यक्रम का ये प्यारा सा, खूबसूरत सा, मीठा सा गीत। कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की कुछ खास बातों के साथ, कुछ खास जानकारियों के साथ, दिन की शुरुआत के साथ। जी दोस्तों, तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। और आज यानी कि 16 जून का बहुत ही खास दिन आप सभी मना रहे हैं। तो दोस्तों मानसून की हम बात करें तो कुछ जगहों में मानसून दस्तक दे भी चुका है और धीरे धीरे शुरुआत एक तरह से कहें तो हो ही चुकी है। और इसी के साथ ऐसा खुशनुमा मौसम भी शुरू हो चुका है जिसमें आप जहां भी जाते हैं वहां प्राकृतिक नज़ारे कई गुना अधिक खूबसूरत नजर आते हैं। हालांकि कुछ जगहों पर अत्यधिक वर्षा होने की वजह से कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप सभी चीजों को समझकर प्लान करें और सावधानी के साथ घूमने के लिए निकलें तो प्रकृति का बेहद शानदार नजारा देखने के लिए इससे बेहतर मौसम और कोई हो ही नहीं सकता। और बात अगर पर्यटन की करें तो हमारे देश में पर्यटकों के पसंदीदा राज्यों में हिमाचल प्रदेश का नाम हमेशा टॉप लिस्ट में बना रहता है। जी दोस्तों, मानसून में तो हिमाचल प्रदेश की एक अलग ही खूबसूरती सामने आती है और इसीलिए इन खास बातों की आज हम बात भी कर रहे हैं। जी दोस्तों, तो जैसे कि हमने पहले ही बात की, जोगिनी वाटरफॉल जो कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बेहतरीन झरनों में से एक है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली हिल स्टेशन में। और इसकी दूरी की बात करें तो ये मनाली बस स्टैंड से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जी दोस्तों, और जिसके लिए आपको वशिष्ठ मंदिर तक जाना होता है और वहां से लगभग 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक करके आप जोगिनी वाटरफॉल पहुंच सकते हैं। वशिष्ठ मंदिर से देवदार के पेड़ों और घास के बागों के बीच से ट्रैक करते हुए जब आप जोगिनी फॉल्स की तरफ जाते हैं तो ये पूरे 1-2 घंटे का ट्रैक के समय खासतौर पर मानसून में बेहद शानदार प्राकृतिक नजारों को देखते हुए कब बीत जाता है पता भी नहीं लगता। ये झरना करीब 160 फीट की ऊंचाई से कई स्तरों से टकराता हुआ नीचे आता है जो दिखने में काफी अद्भुत लगता है। साथ ही झरने के पास ही जोगिनी माता का मंदिर भी है जो यहाँ के लोगों के लिए गहरी आस्था का केंद्र भी है। जी दोस्तों, इसी के साथ हम बात करें चैडविक फॉल्स की। अगर आप शिमला के आसपास घूमने की योजना बना रहे हैं तो चैडविक फॉल्स से बेहतर कुछ नहीं, और खास तौर पर मानसून में इस झरने की और आसपास के प्राकृतिक नजारे के बारे में तो क्या ही कहना। ये नज़ारे किसी स्वर्ग से कम आपको बिल्कुल नहीं लगने वाले। चारों ओर इतनी घनी हरियाली के बीच जब क्रिस्टल की जैसा साफ पानी तेजी से करीब 80 मीटर की हाइट से नीचे गिरता है तो नज़ारा वाकई बेहद शानदार हो जाता है, जिसे एक बार देखने से भी हमेशा के लिए ये आपके मन में समा जाएगा। तो और भी वाटरफॉल्स की जानकारी आप सभी तक जरूर पहुंचाऊंगी, लेकिन एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों कार्यक्रम का ये अगला गीत, उसके बाद फिर से जुड़ते हैं आप सभी के साथ बातचीत के साथ, जानकारियों के साथ।

ये चौड़ा पाट और दो किनारे जो हमेशा एक दूसरे से उतने ही दूर, ये मांझी, ये कश्ती और ये लहरों पे लहराता हुआ नाचता हुआ गीत,

दोस्तों बहुत ही प्यारा सा ये गीत आप सभी इंजॉय कर रहे हैं और साथ ही हम बात कर रहे हैं कुछ बहुत ही प्रसिद्ध से वाटरफॉल्स के जहां घूमने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। तो धर्मशाला की भी हमने बात की, भागसू नाग वाटरफॉल जो है, और इसी के साथ अगर हम बात करें सिसु वाटरफॉल। जी दोस्तों, भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के लाहौल और स्पीति ज़िले में लेह मनाली राजमार्ग पर स्थित एक गांव है जो धीरे धीरे पर्यटकों के नज़रों में जो है एक बेहद खास स्थान बनता जा रहा है। सर्दियों में बर्फिस्तान बन जाने वाला ये गांव अपने खूबसूरत वाटरफॉल के लिए भी जाना जाता है। सर्दियों में तो ये झरना जो है वो जम भी जाता है, और अगर मानसून की बात करें तो यहाँ का नज़ारा वास्तव में जो है वो देखने लायक होता है। जी दोस्तों, इसी के साथ जना वाटरफॉल, अगर हिमाचल प्रदेश के मनाली की छिपी हुई शानदार जगहों की बात करें तो ये वाटरफॉल टॉप लिस्ट में ज़रूर रहेगा। ये झरना मनाली शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है, जहां अंत में करीब 20 से 30 मिनट के ट्रैक के साथ आप इस अद्भुत वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। जी दोस्तों, तो बाहर से दूर दूर से लोग आते हैं और इन खूबसूरत से पलों को कैमरे में कैप्चर करके जो है अपने यहाँ से जो है वो लेकर जाते हैं और अपनी यादों की उस एल्बम में जोड़ लेते हैं। इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों धर्मकोट वाटरफॉल की। पिछले कुछ वर्षों से पर्यटकों के फेवरेट बनते जा रहे इस वाटरफॉल की खूबसूरती अगर आप बारिश के मौसम में देख लेंगे तो ज़िंदगी भर उस नज़ारे को अपने मन से निकाल नहीं पाएंगे। अगर आप धर्मशाला या मैकलोडगंज घूमने का प्लान कर रहे हैं तो धर्मकोट में स्थित इस वाटरफॉल को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ट्रैक करने की और खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारों की इच्छा रखने वालों के लिए ये ट्रैक और झरना वाकई किसी सुंदर कल्पना से कम नहीं है। जी दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं थाला वाटरफॉल की। अगर आपको हिमाचल प्रदेश में बेहद सुकून में भीड़ से एकदम दूर किसी बेहद शानदार स्थान की तलाश है तो आप भरमौर में स्थित थाला झरने में जा सकते हैं, और ये एक ऐसा वाटरफॉल है जिसे आप पूरे साल में किसी भी समय देख सकते हैं और इसका नज़ारा जो है वो उठा सकते हैं। जी दोस्तों, तो ये खूबसूरत सी जानकारी आप सभी तक पहुंचाई ताकि आप कहीं घूमने का प्लान कर भी रहे हैं तो ज़रूर आप जो है इन प्यारे प्यारे से प्लेसेस को मिस ना करें, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है और हम घूम के आ जाते हैं और जब बाद में पता चलता है या फिर ऐसे रील्स वगैरह में हम देखते हैं तो फिर पछतावा होता है कि हम इतनी दूर से गए और वहाँ जाकर भी आ गए लेकिन इस प्यारी सी खूबसूरत सी जगह तक हम पहुँच ही नहीं पाए बिना जानकारी के, बिना किसी नॉलेज के। तो जी दोस्तों, ये बहुत ही खास दिन है आज का और बहुत ही खास इसे मनाना भी चाहिए। और आप सभी इंजॉय कर रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला अपनी रेडियो दोस्त रुचिका की ढेर सारी बातों के साथ। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी को ज़रूर पसंद आई होंगी और आप सभी ने ज़रूर इंजॉय भी किया होगा। तो अब समय है आप सभी से अलविदा लेने का, तो दीजिए अनुमति अपनी रेडियो दोस्त रुचिका को कार्यक्रम संपन्न करने की। फिर होगी मुलाकात एक नई बातचीत नई जानकारियों के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, गूंज अपने पन की।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया, अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेना तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: यार, इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार

0: तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल। पिछले 12 सालों में 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

0: नमस्कार हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम फिर से एक बार हाजिर हो गए हैं आप सभी के साथ 291.2 MHz से। ये है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, और मेरे साथ है मैम
1: रूमा
0: जी। तो हम पहले कार्यक्रम में आप सभी के साथ हमने अपनी जो विचार है वो साझा किए थे, और आज हम उसी कार्यक्रम का दूसरा एपिसोड लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। तो दोस्तों, हम कार्यक्रम का नाम आप सभी को बता देते हैं शुरुआत करने से पहले। तो ये कार्यक्रम है
1: मेरे हौसलों की उड़ान।
0: जी दोस्तों, तो हमारे हौसले जो कि हमें बुलंदियों तक लेकर जाते हैं, तो उन्हीं की उड़ान जो हमें भरनी है वो हम किस तरह से भरेंगे, कौन कौन से अधिकार हमारे लिए हैं जिनके सहारे से हम उस उड़ान को भरेंगे, तो वो सब जानने के लिए आप सभी को जुड़े रहना है दोस्तों हमारे साथ इस कार्यक्रम में मेरे हौसलों की उड़ान में।
1: और दोस्तों, मेरे हौसलों की इस उड़ान का मकसद है समस्त महिलाओं को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना, समस्त नागरिकों को जागरूक करना अपने अधिकारों के लिए, जिन अधिकारों का इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।
0: जी दोस्तों, तो जैसा कि हमने बात की कि हम पहले भी आपके समक्ष अपने विचार साझा कर चुके हैं पहले कार्यक्रम में, अब ये दूसरा एपिसोड है, तो इसमें हम क्या बात करने वाले हैं, क्या खास रहने वाला है, तो ये जानने के लिए क्या करना होगा, आप सभी को जुड़े रहना है हमारे साथ। तो क्यों ना मैम कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले अपने श्रोताओं को एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाया जाए, क्योंकि शुरुआत जब प्यारे से गीत और मीठे सी आवाज के साथ होगी तो कार्यक्रम की थोड़ी और रौनक बढ़ जाएगी।
1: बिल्कुल सही कहा रुचिका आपने
0: जी। तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और फिर से वापस आएंगे इस गीत के बाद, और आज के कार्यक्रम में क्या खास रहने वाला है वो आप सभी के साथ साझा करेंगे।

0: बहुत ही प्यारा गीत सुनाया रुचिका जी आपने हमारे श्रोताओं को।
1: जी मैम, तो अब इस गीत के साथ ही बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। तो आज के कार्यक्रम में हम क्या खास बातचीत करने वाले हैं, क्या जो जानकारी है हम अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं, तो वो आप जरूर बताएं।
0: रुचिका जी, आज इस कार्यक्रम में हम विस्तृत बात करेंगे FIR के बारे में। आप जानती हैं, रोजमर्रा की जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि कहीं अन्याय हो रहा है और अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसकी शिकायत पुलिस में करवाएं, तो वो कैसे करें? बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस पता नहीं है, तो आज इसी मुद्दे पे हम क्यों ना इस कार्यक्रम के तहत चर्चा करें।
1: जी जरूर मैम, तो सबसे पहले तो हमें ये ही बता दीजिए कि FIR है क्या।
0: FIR एक तरह का एक कानूनी दस्तावेज है जिसके बिना पुलिस किसी भी कार्यवाही को अंजाम नहीं दे पाती है। माना कहीं पे कोई अपराध हो रहा है किसी भी प्रकार का, तो उसमें जब तक पुलिस के पास हम रपट दर्ज नहीं करवाएंगे तब तक पुलिस उस शिकायत का कोई निवारण करने के लिए प्रॉपर कदम नहीं उठा पाएगी। FIR को हम यह कह सकते हैं कि किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए, किसी भी क्रिमिनल जैसे आपराधिक मामले में हमारे पास एक पहला टेक्निकल जो डॉक्यूमेंट जिसको हम बोल सकते हैं वो है FIR। के अभाव में हम किसी अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाते हैं और अपराधी को सजा दिलाने के लिए हमें FIR कराना

0: बहुत जरूरी है
1: जी।
0: और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। कहीं पे कोई अपराध हो रहा है किसी भी प्रकार का, छोटा है बड़ा है, गंभीर अपराध है, तो हम प्रथम सूचना पुलिस को देते हैं। ये सूचना किसी भी माध्यम से हो सकती है, फोन के माध्यम से हो सकती है, लिखित माध्यम से हो सकती है। तो ये जो सूचना हम पुलिस को देते हैं, जिसको पुलिस पहले DDR के रूप में या जनरल डायरी में करती है, जनरल डायरी दर्ज करेगी, उसके बाद पुलिस उसमें संज्ञान लेती है और FIR दर्ज होती है।
1: जी मैम, तो अब आपने जिक्र किया है DDR का, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि DDR का क्या मतलब है या इसे हम क्या समझ सकते हैं।
0: DDR एक तरह की, जिसको हम डेली डायरी रिपोर्ट बोल सकते हैं, पुलिस के पास दिन में जो भी शिकायत आती है, जो भी उनके कार्य हैं, एक जनरल डायरी में जिसको GD भी बोल सकते हैं, उसमें ये दर्ज करते हैं। उसके बाद पुलिस उस अपराध की प्रवृत्ति को देख के, उस जो भी उनके पास शिकायत आई है, मौखिक, लिखित या फिर ऑनलाइन आई है, उसकी प्रवृत्ति को देखते हुए पुलिस आगे देखती है कि इसको आगे किस तरह से इसमें कार्रवाई करनी है। अगर उनको लगता है कि ये वाकई ही मुद्दा गंभीर है, तो उसमें वो पुलिस उसको FIR दर्ज करती है। नहीं तो जो हमारी जनरल जो रिपोर्ट्स होती हैं, वो पुलिस की डायरी में दर्ज रहती हैं, क्योंकि एक तरह से एक रिकॉर्ड होता है DDR पुलिस का, जिसको वो मेंटेन रखती है, और ये उनके लिए इस रिकॉर्ड को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है।
1: जी मैम, तो जैसे कि आपने बताया कि DDR में क्या रहता है, कि DDR में जो हम डेली की रिपोर्ट, जो भी सूचनाएं या फिर जो भी हम छोटी छोटी चीजें जो नोटिस करते हैं, तो वो हम डेली डायरी में,
0: जो भी जनरल सूचना, जैसे माना कहीं पे पुलिस को कंप्लेंट आती है, इसमें ऐसे भी हो सकता है मैं कहीं जा रही हूँ रास्ते में, मेरा पर्स गुम हो गया है, खो गया है कहीं पे, तो उसको मैं पुलिस के पास भेज दूंगी कि मेरा रिपोर्ट दर्ज करवा दूंगी, ये DDR पे मेरे से खो गया है वो, लेकिन रास्ते में किसी ने मेरे से मेरा पर्स छीन लिया, छीन के भाग जाता है वो, तो उसको पुलिस, वो चोरी का मामला हो गया, तो उसमें पुलिस FIR दर्ज करेगी।
1: जी, तो मतलब हर एक बोलते हैं वर्ड का एक अलग अलग मीनिंग है, और अपनी जगह पे उनका एक गहराई से अगर देखा जाए तो बहुत महत्व रहता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए साधारण भाषा में बोलूं तो DDR जो है एक जनरल एक एंट्री है पुलिस की अपने रिकॉर्ड के लिए, और FIR वो है जिसमें वो एक उनको एक कार्यवाही उसमें करनी पड़ती है, उसमें पूरी डिटेल पुलिस को, उसमें जो भी शिकायत करता है या उससे, वो उनको उसमें FIR में पूरी रिकॉर्ड करनी पड़ती है।
1: जी मैम, तो अब इस जानकारी को आगे बढ़ाते हुए और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक लेते हैं प्यारा सा म्यूजिक।
0: बिल्कुल, मैं भी आपसे ये कहना चाह रही थी, क्योंकि जब हम गंभीर मुद्दों की बात करते हैं तो श्रोता भी हमारे थोड़ा बहुत गंभीर हो जाते हैं, और कई बार कई चीजों से वो परे भी हटने की कोशिश करते हैं, तो अपने श्रोताओं को बांध के रखने के लिए एक प्यारा सा मीठा सा गीत तो बनता है।
1: जी मैम, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और अपने दोस्तों को भी सुनाते हैं। तो इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद फिर से आते हैं वापस आप सभी के साथ इस बहुत ही गहन और महत्वपूर्ण बातचीत के साथ।

0: 291 दशमलव 2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका। और आज के कार्यक्रम में मेरे साथ है मैम
1: रूमा
0: जी। तो आज हम बात कर रहे हैं FIR के बारे में कि FIR क्या होती है और आज का हमारा विषय यही है किस तरह से FIR आप करवा सकते हैं, क्या क्या आपको उसके लिए फॉर्मेलिटीज करनी होती है, तो यही हम बातचीत करेंगे। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब मैम से जानते हैं। मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि FIR कौन कौन दर्ज करवा सकते हैं और कब करवा सकते हैं।
1: कोई भी व्यक्ति FIR करवा सकता है जिसको अपराध का नॉलेज है, हमारे आसपास में कहीं कोई अपराध हो रहा है उसके बारे में आपको पता है लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मुझे इस बारे में आवाज उठानी चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के खिलाफ जो वहाँ पे अपराध कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, तो वो FIR करवा सकता है। वो व्यक्ति जिसके साथ गलत हो रहा है, जिसके साथ किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, वो भी FIR करवा सकता है। कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जो हमारे देश का, वो FIR करवा सकता है
0: जी। मतलब कि ये हर एक व्यक्ति का अधिकार है, जब भी उनके साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है या उनके साथ कुछ गलत हो जाता है
1: बिल्कुल,
0: तो वो पुलिस की सहायता ले सकते हैं। पर ऐसा भी ये होता है कई बार कि कई छोटी छोटी सी बातों को लेकर भी सोचते हैं कि हम FIR दर्ज करवाएं, तो उस केस में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि कई बार छोटी छोटी मुद्दों को लेकर हम कोर्ट कचहरी में या थाने में पहुंच जाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है, जो मुद्दे घर में बैठ के सॉल्व हो जाते हैं, तो पुलिस उनको DDR या जनरल डायरी करती है। और अगर उनको लगेगा कि इसमें हाँ बाकी कुछ गंभीर हो रहा है और इस मैटर में कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस FIR दर्ज करती है।
0: बिल्कुल, तो हम इस मतलब यही समझ सकते हैं कि समय की बर्बादी कह सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: समय जो की बातचीत से अगर सॉल्व हो सकती है तो क्यों उसे इतना बड़ा।
1: बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो जिनकी वजह से ऐसे ही थानों में बहुत सारी रिपोर्टें होती हैं जो जनरली सिंपल गाली गलौज है, घर के छोटे छोटे मुद्दे हैं जिनको कई बार आपने देखा होगा कि हम दूसरों को परेशान करने के लिए भी इस तरह के एक्शन ले लेते हैं और थाने में चले जाते हैं और बाद में हम बोलते हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लेकिन उसका एक रीजन रहता है कि छोटे छोटे मुद्दे जिनका कोई औचित्य नहीं होता है उनके खिलाफ पुलिस ही कार्रवाई करने में मुश्किल फेस करती है, तो ऐसे में वहाँ पे काउंसलिंग होती है दोनों पार्टीज को जिनके बीच वो मुद्दा है, छोटा मोटा घरेलू है या जो भी है, जिसके लिए मुझे नहीं लगता कि पुलिस में जाने की जरूरत है। तो ऐसे मामलों में पुलिस काउंसलिंग वगैरह करवा के उन मुद्दों को वहीं पे खत्म करने की कोशिश करती है।
0: जी मैम, तो अब मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या ऐसा भी होता है कि कोई जो है कोई भी व्यक्ति पुलिस में अपनी FIR दर्ज करवाना चाहता है या करवाना चाहे लेकिन पुलिस उसकी FIR दर्ज करने से मना कर देती है, तो ऐसे केस में फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है या उसे किसकी सहायता लेनी चाहिए और अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है?
1: ज्यादातर मामलों में जब भी हम थाने में जाते हैं तो पुलिस हमारी रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद उसमें अगर संज्ञान अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें FIR दर्ज हो जाती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में पुलिस को मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद वो FIR दर्ज कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पुलिस किसी व्यक्ति के प्रभाव में आके या किसी स्पेशल व्यक्ति को बचाने के लिए या किसी बात को छुपाने के लिए इस तरह से कर सकते हैं। ज्यादातर होता नहीं है, हमारी पुलिस बहुत ईमानदार है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष के प्रभाव में आगे कई बार पुलिस
0: सिचुएशन ही वैसी
1: सिचुएशन आती है तो पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, या कई बार किसी अपराध को वैसे ही छुपाने की कोशिश में कई लोग कई तरह के आपको पता है अनैतिक कार्य भी हमारे यहाँ होते हैं। तो ऐसे थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी अपने श्रोताओं से, मैं इस तरह की बात कर रही हूँ लेकिन होता है, हमारे कई बार होता है। एज ए एडवोकेट मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है कि वो पुलिस में जाते हैं लेकिन FIR दर्ज नहीं हो पाती है उनकी, तो ऐसे में फिर उनको प्राइवेट कंप्लेंट देनी पड़ती है कोर्ट में, फिर कोर्ट के थ्रू इंक्वायरी होती है तो कोर्ट के ऑर्डर से वो FIR होती है। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोई पुलिस अधिकारी आपकी किसी भी वजह से आप FIR दर्ज नहीं कर रहा है तो आप पुलिस अधीक्षक को या DIG पुलिस को लेटर दे सकते हैं और इसमें उस व्यक्ति के खिलाफ या पुलिस अधिकारी के खिलाफ इंक्वायरी के आदेश जो उच्च अधिकारी हैं वो पास कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं।
0: जी मैम, तो अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले फिर से चलते हैं एक प्यारे से गीत की तरफ।
1: बिल्कुल,
0: तो आइए सुनाते हैं श्रोताओं को एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर से वापस आएंगे कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में।

0: तो श्रोताओ, एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में आप सभी के साथ बातचीत करने। तो आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और अब फिर से अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। तो रूमा मैम, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं FIR की
1: जी,
0: तो अब मैं एक बेसिक सा सवाल है कि अगर FIR जैसे मुझे ही करनी है, मुझे कोई मेरे साथ कोई घटना हो गई है या कोई मेरे चाहने वाले या मेरे कोई मतलब खास रिश्तेदार है ना, उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है तो मैंने FIR करवानी, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, किस तरह से हम FIR करवा सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो FIR करते समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए?
1: जी रुचिका जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति, पहले तो मैंने आपको बताया कि FIR करवा सकता है, चाहे वो पीड़ित हो या उसका जानने वाला हो। उसके बाद FIR दर्ज करवाने के लिए हम लिखित में पुलिस को शिकायत दे सकते हैं, पुलिस थाने में जाके हम मौखिक तौर पे भी पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी हमारे पास पुलिस में एक हिमाचल सिटीजन नाम से एक वेबसाइट है, उसमें जाके हम पुलिस में ऑनलाइन भी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। और इस FIR को दर्ज करवाते समय हमें विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें पहले शिकायतकर्ता का नाम, पता, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अगर है तो वो भी, उसके साथ साथ जहाँ पे घटना हुई है उस जगह का ब्यौरा पुलिस को देना पड़ता है। क्या वहाँ पे अपराध हुआ है, किस तरह का अपराध हुआ है, किसके साथ अपराध हुआ है, उस अपराध की प्रवृत्ति कितनी गंभीर है या सामान्य अपराध है, वो सब हमें उस FIR में दर्ज करवाना पड़ता है। और उसके अलावा फिर हमें आरोपी व्यक्ति के बारे में भी सारी डिटेल हमें पुलिस को देनी पड़ती है ताकि पुलिस उस तक आराम से आसानी से पहुँच पाए। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। अगर मान लो कहीं कोई चीज हमसे छूट जाती है तो बाद में फिर हमें पुलिस को भी दिक्कतें आती है और कोर्ट में जब उस चलान को पेश किया जाता है, कोर्ट के समक्ष जब वो न्याय के लिए उस केस को लाया जाता है, तो वहाँ पे हमने कई बार देखा है कि अपराधी जो है गंभीर अपराधों में भी छूट जाते हैं, तो उसमें वो हमारी ही कुछ न कुछ कमी रह जाती है कि जब हम FIR दर्ज करवाते हैं तो बहुत सारी चीजों को हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान होता है कि ध्यान रखना होगा FIR करते समय, लिखवाते समय, कि जहाँ पे अपराध हुआ है वहाँ पे मौके पे कौन कौन था, किस किसने उस अपराध को देखा है, उस केस में गवाह कौन कौन है, उनकी भी डिटेल हमें पुलिस को देनी पड़ती है।
0: जी मैम, क्योंकि जब हमें ये सारी बातें पता होंगी, हम जानते होंगे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना जो है वो नहीं करना पड़ेगा
1: जी।
0: क्योंकि ऐसे हम ब्लैंक होके, जैसे हमें पता, कई बार होता है कि कुछ लोगों को नहीं पता होता है और उनके साथ गलत हुआ होता है, जब वो FIR करवाने जाते हैं तो फिर उन्हें सामने से जो क्वेश्चन आते हैं तो वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो फिर सही से जवाब भी नहीं दे पाते।
1: इसलिए हम जो भी हमारे पास जानकारी है उस अपराध से संबंधित, वो हमें पुलिस को डिटेल में बतानी चाहिए, अब तभी पुलिस जो है हमारी अच्छे से मदद कर पाएगी।
0: जी मैम, और अब हम बात करें कि जैसे FIR आपने बता दिया कि इसका प्रोसेस क्या रहता है कि

0: रोजाना जब जागो तभी सवेरा, अगर किसी व्यक्ति किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी बच्चे के साथ इस तरह का कोई गंभीर अपराध हुआ है और उसको लगता है कि अपराध मेरे साथ बार बार हो सकता है, बहुत पहले भी हुआ हो, वो ऐसे मामलों में वो कभी भी FIR दर्ज करवा सकते हैं।
1: जी मैम, तो जैसे कि अभी बात की है आपने महिलाओं और बच्चों की, तो हमारा कार्यक्रम जो है खास है भी महिलाओं और बच्चों पर आधारित, तो उनकी बात ना हो तो कार्यक्रम तो फिर हमारा बिल्कुल अधूरा सा रह जाएगा, तो उनके पर भी हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम
0: मैं रोकना चाह रही हूँ आपको यहीं पे, बहुत देर हो गई है, हमारे श्रोताओं ने एक प्यारा सा गीत नहीं सुना है।
1: जी जरूर, तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और उसके बाद फिर से वापस आएंगे और जानेंगे महिलाओं और बच्चों के बारे में।
0: जी

0: तो दोस्तों एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं कार्यक्रम मेरे हौसलों की उड़ान में आप सभी के साथ बातचीत करने। तो आइए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे महिलाओं और बच्चों की। तो मैम अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कोई जैसे FIR दर्ज करवाई है किसी ने और उसमें महिला या फिर कोई बच्चा जो है मुस्लिम है, तो उनके लिए कोई खास प्रावधान या किस तरह से उनके लिए कोई प्रावधान रहते हैं?
1: बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने रुचिका जी पूछा है मुझे। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान है हमारे कानून में। अगर किसी महिला अपराधी या किसी बच्चे के खिलाफ कोई अपराध दर्ज किया जाता है तो उसमें विशेष प्रावधान है। पहले तो मैं बच्चों

की बात करूंगी तो बच्चों के लिए, तो अगर किसी बच्चे को अपराधी है किसी केस में, चाहे कोई गंभीर मुद्दा है, तो पुलिस जो है वो एक तो उस बच्चे से जब बात करेगी या उस बच्चे के केस में मौके पे जाएगी तो वहाँ पे वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कहते हैं ना बच्चे बिल्कुल ये मान सकते हैं कि बच्चे डर जाते हैं पुलिस को देख के, किसी भी यूनिफॉर्म को, पुलिस हो वकील हो, उनको यूनिफॉर्म में देखते हैं तो वो डर जाते हैं। तो ये विशेष प्रावधान है कि पुलिस किसी भी बच्चों के केस के मामले में संज्ञान लेती है तो उस बच्चा, जिसको वैसे तो हम बच्चों को अपराधी नहीं अपचारी बोलते हैं, तो ऐसे किसी बाल अपचारी के पास जब पुलिस जाती है तो वो यूनिफॉर्म नहीं पहनेगी, उससे एक दोस्त की तरह बात करेंगे, उसको फैमिलियर माहौल देंगे वो। और जब पुलिस बच्चे को किसी भी केस में अप्रिहेंड करती है, उसको उस केस में पकड़ती है, तो बच्चे को पुलिस थाने में डायरेक्ट नहीं ले जाया जाएगा, उसके लिए विशेष हमारे जो पुलिस बाल पुलिस इकाई है, इसकी चर्चा हम फिर किसी अगले कार्यक्रम में करेंगे। तो वहाँ पे उसको लेके जाया जाता है, फिर पुलिस को मैजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है, उसको सामान्य कोर्ट में पेश ना करके बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जिसको कहते हैं, जहाँ पे एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट और दो सोशल वर्कर, एक महिला और एक पुरुष होते हैं, उनके समक्ष उनको पेश किया जाता है। अगर पुलिस अधिकारी उस बच्चे को यूनिफॉर्म में अरेस्ट कर लेते हैं या फिर बच्चे को सामान्य कोर्ट में, मतलब जो एक जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसका भी हम चर्चा बाद में करेंगे अपने किसी कार्यक्रम में, तो उनकी फॉर्मेलिटीज को अगर पूरा नहीं करते हैं तो पुलिस अधिकारी के खिलाफ या उस कर्मचारी के खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं के मुद्दे में ये है कि कोई भी महिला अपराधी अगर उसके खिलाफ FIR हुई है तो पुलिस उसको शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले अरेस्ट नहीं कर सकती है। और अगर उस महिला का भी बयान रिकॉर्ड करना है तो महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी, या महिला पुलिस अधिकारी नहीं है थाने में तो वहाँ पे उस महिला के परिवार की कोई महिला सदस्य या परिवार के सदस्य वहाँ पे होने जरूरी हैं। महिला को बार बार थाने में आने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। अगर कोई बच्चा अपराधी है, अगर वो बोल देता है कि मुझे मेडिकल नहीं करवाना है, तो पुलिस उस बच्चे का जबरदस्ती मेडिकल नहीं करवा सकती है। दूसरा, महिला का अगर मेडिकल करवाना है FIR होने के बाद, की ये भी एक प्रोसेस है कि जब FIR दर्ज हो जाती है तो पुलिस किसी भी अपराधी को जब गिरफ्तार करती है तो उनका मेडिकल भी करवाया जाता है। तो मेडिकल के लिए पुलिस जो है वो उस महिला के किसी

0: महिला होनी चाहिए, साथ में उसका परिवार का कोई सदस्य होना जरूरी है।
1: जी मैम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दोस्तों तक पहुंचाई है कि महिला, क्योंकि कई बार होता है ना कि हमें जिस चीज का नॉलेज नहीं होता है तो हम जानने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि ऐसे कोर्ट कचहरी के मामले से तो फिर वैसे ही बोला जाता है कि लड़कियों को तो वैसे ही बोला जाता है कि आप दूर ही रहिए, या महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें तो फिर वो उसको जान नहीं पाते हैं।
0: बिल्कुल रुचिका जी, और आजकल के समय में जिस तरह के अपराध हम महिलाओं के साथ हो रहे हैं, बच्चों के साथ हो रहे हैं, तो कई बार तो हम परिवार में ही ऐसे गंभीर अपराधों को भी छुपा जाते हैं। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ यौन अपराध हो रहे हैं, लेकिन एक अपनी इज्जत की खातिर या तो हमारे परिवार के सदस्य ही बोल देते हैं कि नहीं, हमें थाने में नहीं जाना है, और वो महिला चुपचाप से उन अपराधों को उनको सहे जा रही है। और इस तरह से सहने से क्या हो रहा है, एक तो हम अपराधियों को और ज्यादा शह दे रहे हैं, वो उनको बढ़ावा मिल रहा है। वो एक महिला के साथ छेड़छाड़ करेंगे, उनके साथ अगर कोई कार्रवाई टाइम पर नहीं होगी तो फिर वो इसी जद में कोई और महिला आएगी, और इस तरह से, और वो देखते हैं अपराधी जो इस तरह का होगा वो यही देखेगा कि मैं कहाँ पे किसको हरास करूंगा तो मेरे साथ गलत नहीं हो सकता है। वो ऐसे कमजोर पक्ष को ढूंढते हैं और उनके साथ गलत करते हैं। और महिलाएं और बच्चे तो पहले ही हम मान के चले हैं कि ये वो तबका है हमारी सोसाइटी का जो अपने हक के लिए ही आवाज नहीं उठा पाता है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: ऐसे में महिलाओं को आगे आना चाहिए, अगर उनके साथ कोई गलत
1: कोई घटना
0: हो रही है तो ऐसे में उनको आगे आना चाहिए ताकि इन अपराधों की पुनरावृत्ति ना हो और ये अपराध जो हमारे खिलाफ हो रहे हैं वो कम से कम हो।
1: जी बिल्कुल मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कोई भी गलती अगर हो रही है तो उसके पीछे हम ही कोई ऐसी चीज कर देते हैं जिससे उन्हें बढ़ावा मिल जाता है और वो जो दोषी है वो और गलत करने का सोचते हैं।
0: और अपराध की जो दर है वो दिन प्रतिदिन
1: बढ़ती जा रही है।
0: हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम बच्चियों को स्कूल भेजते हैं तो हमें डर लगता है। तो ये सब चीजें जो है, इन चीजों से बचने के लिए हमें, मेरा तो सभी बहनों से, बच्चों से अनुरोध है कि अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहें। जहां उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, उस गलत को रोकने के लिए वो प्रयास करें। जब तक हम खुद अपने लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक हम अपना सहारा खुद नहीं बनेंगे, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं आएगा। और हमारे ये जो कानून है वो इतने बढ़िया है, इतनी अच्छी सुविधाएं हमें दी हैं कि जैसे अभी मैंने कहा कि महिला को थाने में नहीं बुला सकते, महिला को पुलिस थाने में आने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है कि आप आइए और यहाँ पे दर्ज, हमारे पास FIR दर्ज करवाइए या फिर बयान दर्ज कीजिए। पुलिस खुद उस महिला के घर में जाके या उस बच्चे के पास जाके FIR दर्ज कर सकती है, उनके बयान दर्ज कर सकती है, उनके जो भी उनकी इस केस में उनको जरूरतें हैं पुलिस उनको खुद असिस्ट करती है। तो इस तरह से अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो उसे छुपाइए मत, क्योंकि छुपाने से क्या है, चीजें बढ़ जाती हैं। हमारे साथ अपराधों की जो प्रवृत्ति है वो और ज्यादा इंटेंस होके हमारे सामने आते हैं। तो इन चीजों को रोकने के लिए हमें खुद ही सबल होना पड़ेगा, खुद के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम कहाँ जाएं, कहाँ FIR करवाएं। हाँ, ये मुद्दा भी बताऊंगी, FIR करवाने के लिए अपने आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके FIR करवा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको बड़े कहीं जगह जाना है, आपके घर के आसपास कोई चौकी है तो आप वहाँ पे भी दर्ज करवा सकती हैं। और अगर आपके साथ कोई थाने में जाने के लिए तैयार नहीं है तो आप ऑनलाइन दर्ज करवा दीजिए। 100 नंबर पे पुलिस की सहायता हमें हमेशा मिलती है, तो आप उस पे जाइए। और अभी हमारे राज्य सरकार ने एक और महिलाओं के, पीड़ित महिलाओं के लिए स्कीम शुरू करी थी, वन स्टॉप सेंटर करके, सखी नाम से हेल्पलाइन नंबर है, उस पे भी महिलाएं जो हैं वो अपनी बात रख सकती हैं। वन स्टॉप सेंटर में जाके अगर उनको FIR करवानी है तो वहाँ पे भी हमारे लीगल एडवाइजर्स रहते हैं, उनके माध्यम से वो FIR दर्ज करवा सकती हैं।
1: जी मैम, तो बहुत ही बढ़िया, और बहुत ही बोलते हैं ना कि एक गहराई में जाकर आपने ये जानकारी महिलाओं तक पहुँचाई है। और उम्मीद करते हैं कि जो महिलाएं, क्योंकि खासकर ये केसेस कहाँ देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एक बोलते हैं ना कि वही बात आ गई कि हमारी सोच हमें
0: जहाँ कमी
1: लेके चली जाती है,
0: जहाँ जागरूकता की कमी है और जहाँ पे हम कहीं ना कहीं इस बात में बंधे रहते हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे परिवार का क्या होगा,
1: परिवार वालों को लोग क्या बोलेंगे।
0: बिल्कुल। दूसरा, एजुकेशन की कमी महिलाओं के साथ ये भी रहता है, परिवार की इज्जत के साथ साथ अगर कोई अपने हक में आवाज उठाना चाहती है तो उनका नॉलेज नहीं है। और हमारे इस मकसद, मेरे हौसलों की उड़ान कार्यक्रम का मकसद यही है कि हम आप तक जानकारी पहुंचाएं, आप इस कार्यक्रम को सुनिए, हमारे साथ जुड़िए, और किसी भी प्रकार की कानूनी जानकारी भी अगर चाहते हैं तो उसके संदर्भ

0: में भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो उसके लिए हम आपका तहे दिल से आपकी मदद करेंगे। हम चाहेंगे कि आपके साथ कहीं कुछ गलत हो रहा है या आप किसी गलत घटना के शिकार हैं लेकिन आवाज नहीं उठा पाए हैं, तो उसमें हम आपकी पूरी मदद करेंगे। रुचिका जी, बहुत देर से हमारी बातें हो रही हैं और हमारे श्रोता कहीं बोर ना हो जाएं।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि हम वन बाय वन एक से दूसरी बात हम जोड़ दे रहे हैं और थोड़ा सा अपने दोस्तों की, अपने श्रोताओं की एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल, तो एक प्यारा सा गीत फिर से सुन लेते।
1: जी चलिए, तो सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत और आते हैं फिर इस गीत के बाद वापस अपने कार्यक्रम में।

0: तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं मैम से कि हम ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें की पुलिस डायरेक्ट जो है FIR दर्ज कर सकती है। तो मैम प्लीज आप मुझे भी बताइए और हमारे दोस्तों को भी बताइए कि ऐसे कौन कौन से मामले हैं जिनमें की डायरेक्ट जो है FIR दर्ज करवाई जा सकती है।
1: बहुत सारे ऐसे गंभीर मामले हैं रुचिका जी, जिनमें पुलिस जो है वो डायरेक्ट FIR दर्ज कर लेती है। इनको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए FIR दर्ज करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपने सुना होगा हत्या के मामले हैं, रेप के मामले हैं, ड्रग्स के से रिलेटेड जो मामले हैं, जो भी बहुत ही गंभीर किस्म के अपराध, उनमें पुलिस बिना किसी वारंट के या बिना किसी DDR के डायरेक्ट फोन पे या किसी उसमें सूचना के आधार पर FIR दर्ज कर सकती
0: है। जी, बहुत अच्छे से बताया मैम आपने कि किस तरह से या कौन कौन से ऐसे मामले रहते हैं जिसमें कि डायरेक्ट जो है हम FIR दर्ज करवा सकते हैं। अब ये जानना चाहूंगी कि FIR दर्ज करवाने के बाद जो है क्या प्रोसेस रहता है या क्या उसके बाद किया जाता है।
1: FIR दर्ज हो जाने के बाद पहला जो कार्यवाही पुलिस की रहती है वो यह कि वो दोनों पार्टीज के साथ जिसके अपराधी को संपर्क करती है, वह मौके पे जाती है जहाँ पे अपराध हुआ है, मौके वारदात पे जाके इंक्वायरी करती है। उसके बाद जो भी FIR से रिलेटेड जो भी घटना है, घटना का ब्यौरा नोट करेगी, गवाहों के बयान दर्ज करेगी पुलिस, उसके बाद जो शिकायत करता है उसके बयान दर्ज करेगी, उसके बाद सारी कार्रवाई एक चालान चार्ज शीट इसको बोलते हैं वो तैयार होती है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस के पास इंक्वायरी के लिए 90 दिन का समय होता है और अगर किसी विशेष परिस्थिति में 90 दिन के अंदर वो कार्रवाई नहीं पूरी हो पाती है तो इसमें पुलिस 90 दिन का और समय एक बार ले सकती है। और जब ये सारी कार्यवाही पूरी हो जाती है तो इस चार्ज शीट को पुलिस कोर्ट में दर्ज करती है, कोर्ट में दाखिल करती है, और कोर्ट में दाखिल होने के क्या समय जो है वो चार्जशीट को पुलिस कोर्ट में दाखिल करती है और इस चार्जशीट को पूरी इंक्वायरी पूरी होने के बाद कोर्ट में दाखिल करने का समय 60 दिन का होता है। 60 दिन के भीतर पुलिस को ये जो भी कार्रवाई की है उसकी रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी पड़ती है।
0: जी मैम, तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत जो है अपने दोस्तों के साथ की है और उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त महिलाएं और बच्चे जो हैं इस अधिकार के बारे में जान ही चुके होंगे और अपने अधिकारों का जो है फायदा जो है हमें लेना चाहिए, पर एक ध्यान जरूर रखना है हमेशा कि उसका गलत फायदा हम कभी भी ना उठाएं।
1: बिल्कुल नहीं, और मैं यहाँ एक बार और जोड़ना चाहूंगी, अगर हम बिना किसी को परेशान करने के लिए गलत FIR दर्ज करवाते हैं तो गलत FIR करवाने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई होती है और उस पे भी सजा के प्रावधान है।
0: जी, क्योंकि हम अनजाने में ही सही, पर हम कई बार शैतानियों के चलते ही ऐसी हरकतें कर देते हैं कि मजे लेने के लिए ही कई बार होते हैं ऐसे।
1: कई बार हम किसी को बिना मतलब के हरास करने के लिए गलत FIR करवा देते हैं तो ये भी एक अपराध है।
0: जी,
1: तो गलत इंफॉर्मेशन किसी पुलिस अधिकारी को देना या किसी थाने में देना भी अपराध है। तो इस तरह की कोई भी जो गलत जानकारी पुलिस तक ना दें, उनके कार्य को ना बढ़ाएं। वैसे ही आप देखते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें समय पर न्याय नहीं मिल पाता है, तो उसका कारण कई बार ये भी होता है कि हम पर्सनल रंजिश के चलते किसी को झूठे मामलों में भी हम फंसा देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, अपने हमें जो अधिकार मिले हैं उनका एक पॉजिटिव वे में यूज करना है और उन अधिकारों के लिए अपनी जो आवाज है वो बहुत जरूरी है उठाना, जो कि कई केसेस ऐसे होते हैं हम बहुत सारी बातें सोचते हैं और अपने ही लिए आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो ये कार्यक्रम हम इसीलिए आप सभी के लिए लेकर आए हैं ताकि आप अपने लिए आवाज उठा सकें, क्योंकि हम सभी का ध्यान रखते रखते अपने आप को भूल जाते हैं। तो अपने आप को नहीं भूलना है और अपने आप के लिए आवाज उठाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब हम औरों के लिए खड़े हो सकते हैं तो अपने लिए भी खड़ा होना चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी दोस्तों कि जो भी अगर आपकी कानून से संबंधित कोई भी अगर आपकी परेशानी है या कोई भी ऐसी समस्या है जिसका आपको समाधान चाहिए तो आप डायरेक्ट रूमा मैम के साथ जुड़ सकते हैं और उनसे अपनी समस्या का समाधान जो है वो आप पा सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो मैम प्लीज आप हमारे दोस्तों को बताइए कि वो किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं और कैसे आपको संपर्क कर सकते हैं।
1: बिल्कुल रुचिका जी, जब तक हम इनको अपना संपर्क नंबर नहीं बताएंगे तो ये हमसे कैसे जुड़ेंगे।
0: जी बिल्कुल,
1: तो आप सभी नोट कर लीजिए, हमारा संपर्क नंबर है 9418 31223। आप इस नंबर के माध्यम से किसी भी तरह की कानूनी जानकारी FIR के संदर्भ में अगर आप हमसे चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
0: जी दोस्तों, तो मैम ने आपको अपना नंबर बता दिया है, तो जैसे भी अगर, पर ये नहीं है कि फिर वही बात आ गई कि गलत है, उसके लिए कोई भी काम नहीं करना। आपने मैम से कोई भी अगर समस्या का समाधान चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों आपको, 9418431223। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं और मैम से आप जुड़ सकते हैं। तो मैम अब लेते हैं अपने दोस्तों से अलविदा, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हमने बहुत बातें की हैं और उम्मीद करते हैं कि दोस्तों को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है उन तक पहुंची है। और अब इन्हीं बातों के साथ कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न करते हैं, फिर मिलेंगे किसी और कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ, है ना, नई जानकारी के साथ।
1: जी हाँ रुचिका, दोस्तों को अलविदा तो नहीं हम कहेंगे, क्योंकि मुझे लगता है इस कार्यक्रम में हम उनसे लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं उनसे जुड़ी रहूं और श्रोता भी हमारे हमसे जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। तो आप प्लीज हमसे जुड़े रहिए, अपनी जानकारियां साझा कीजिए, अपनी तकलीफ, अपनी जो भी आपकी समस्या है वो हमसे साझा कीजिए। हम आपकी समस्या के निवारण में जहां तक संभव हो सकेगा आपकी सहायता करेंगे और हमारे इस कार्यक्रम को सुनना ना भूलिएगा।
0: जी बिल्कुल दोस्तों, रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जानकारी जो है आप ले सकते हैं। दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। अब तक इंतजार कीजिए और बने रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

0: शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
2: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवो टेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियाँ वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

0: नमस्ते दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी जुड़े हुए हो ते मैं तुहाडी रेडियो दोस्त ज्योति पठानिया। हुण समा हो गया पंजाबी गीतां दा ते आओ सुनदे हां पंजाबी गीत।
1: 46, 47, 48, 49, 50।
2: टकला भी करती है
3: भैया जी ने।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला तो तुसी एंजॉय कर रहे हो पंजाबी गीत। मैं तुहाडे नाल तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आओ सुनदे हां प्रोग्राम दा एक होर सोहणा जिहा पंजाबी गीत।

श्रोतियो रेडियो गुंजन धर्मशाला दे नाल तुसी बने हुए हो ते सुन रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया ते आओ अगला गीत तुहाडी पेश नजर।

0: 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो कुंजन धर्मशाला तू सारे श्रोते एंजॉय कर रहे ने प्रोग्राम पंजाबी गीत अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया दे नाल ते होर पंजाबी गीत सुन जिया तुहानू भेज रहे हां तुहाडे रेडियो सेट्स ते।
1: Tell me what you want, little boy.

यह रेडियो कुंजन धर्मशाला 91.2 MHz। इस वक्त तुसी एंजॉय कर रहे हो प्रोग्राम पंजाबी गीत। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। ते आओ हुण सुनदे हां प्रोग्राम दा होर पंजाबी गीत।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला है ते तुसी 91.2 MHz ते बने हुए हो। मैं हां तुहाडी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। उम्मीद है पंजाबी गीतां दे इस प्रोग्राम च तुसी काफी इंजॉय कर रहे हो। तां हुण पेश कर रहे हां प्रोग्राम दा आखरी पंजाबी गीत।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

92.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ए तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कन तुहां सारे कार्यक्रम सुना देना माटी दी महक अपनी रेडियो दोस्त रुचिका कन्ना।

अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला श्रोतो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुन दे माटी दी महक तो सुन दे न कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इन ही बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

अपना सामुदायिक रेडियो गुंजन धर्मशाला कनिष्ठो तो हाँ सारे इस कार्यक्रम सुना दे माटी दी महक तो सुन दे ना कार्यक्रम दा अगला गीत तो हाँ सारे इन बनी रिया कने सुन दे रिया रेडियो गुंजन धर्मशाला गूंज अपने बंदी।

कानवे दशमलव 2 MHz पर ये तुहां सारे दा अपना पसंदीदा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने श्रोताओ तुहां सारे अपने पसंदीदा कार्यक्रम सुना दे जिसका नाम है माटी दी महक। सुन दे कार्यक्रम दा अगला गीत।

कानवे दशमलव दो मेगा हर्ट्स पर ए तुहां सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला जी श्रोताओं कने तुहां सारे कार्यक्रम सुना दे थे माटी दी महका। आज दे कार्यक्रम च बस इतना ही। तुहां

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया। अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गांव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊं?
1: ताला।
0: क्या?
1: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
0: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
1: चलो।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5,00,000 तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

0: नमस्कार श्रोतो, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्म चला तो है सभी ट्यून कर रहा और हम सचिन कपूर हाजिर बुझ गो जी तुंदे सभी रे रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंज के हाल चाल ने तुंदे उम्मीद करनो तुंदे हाल चाल खरे बुने तो है सब ठीक बुने खुश बुने अपने घरे और तंदुरुस्त बुने हिन तो खुश और तंदुरुस्त रहने की सो जिंदगी में बड़ा ज़रूरी है। अक्सर बलदे रोज बलदे रोज़ाना बलदे इन श्रोतों है ना। और तू पता क्या है सब आजकल फेसबुक रे माध्यम थो भी तुझको कि सो लाइव जुड़ू करते हैं और श्रोतों तो सब श्रोता के सो हसो कि बिल्कुल जुड़ी सकते हैं अपना पसंदीदा गीत के ऐसो हो सकते हैं 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर नंबर हक मौके हूँ रिपीट करना चाहूँ तू सब भी सोगी 7 0 8 8 8 7 0 9 8 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत किया सो हो सकते हैं अपने क्षेत्र जानकारी किया सो वो गीत साझा कर सकते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं जनाब तुंदा पसंदीदा गीत असु जरूर सुनाना है अने जानकारी भी तुस होगी कि असो जरूर असू शेयर करनी है और साझा करनी है जानकारी शेयर करनी ने और साझा भी करनी इन शतों तो चलिए बहुत सारी जानकारी इन जो तो सो गया सो दसनी इन शतों तो फिलहाल तो है कार्यक्रम मंज बढ़ दिन थोड़ा करे हगूँ और तू सभी श्रोता जो थोड़े करी और जानकारी होगी क्या सो साझा कर दें यानी कि सभी पहले तब फेसबुक रहे माध्यम तो तुस होगे लाइव किया सो जुड़ी गंदे हैं छो तो स्वागत हक मौके फिर सभी होने वाले रहा सभी श्रोता गण रहा जितने भी श्रोता होगी भरपूर रेडियो रा आनंद ले करते बुने पूरे दिन थो और भरपूर अस होगी जुड़ रहे हैं तुंदा सभी रहा हाँ नाची सचिन कपूर तह दिल थो स्वागत करनो हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ श्रोतो तइए जी कार्यक्रम मन सभी वाले तो तू पता कि धर्मशाला रा मौसम जानने वास्ते बड़े मनु किन सो एक्साइटेड बुंदे हैं और इन दे पहले कॉल के असो भी बिल्कुल कॉलर के असो भी बिल्कुल असोगी चूड़ी चुकू रहे कनेक्ट कर दें तुसु सब भी सोगे भी कि असो कनेक्ट कर बंदे हैं छोड़ो बलदन कि जितना दिता मेरी मोए मंजो जितना दिता मेरी मोए मुंजो उतनी ता मेरी औकात नहीं आ ये ता कर्म हाँ मेरी मारा वरना मुंजा मुंजो अमा मुंजो माता कोई बात नहीं आ मुंजो माता कोई बात नहीं आ जी बिल्कुल स्वागत है सभी होने वाले रहा सभी श्रोतागण रहा इन द श्रोतागण असु के कनेक्टेड हैं पुछ दिन कौन बोलूँ दे नमस्ते जी
1: नमस्ते जी नमस्ते
0: नमस्ते जी नमस्ते ठीक ठाक राजीव बाजी
1: हाँ जी ठीक ठाक जी
0: अच्छा जी कौन बोलूं देन और कड़ी थम बोलूं देन जनाब
1: हाँ बोला जी निर्मला देवी जी नगरोटे दे जी
0: क्या बात है नगरोटे थे नगरोटे थे ज्यादा होने इस समय तापमान है ना जी
1: हाँ जी
0: थोड़ी गर्मी ज्यादा नगरोटे साइड है ना जी
1: हाँ जी बरखा जी होइया ता ठंड ते ये शांति ही जी
0: थोड़ी बहुत चलिए जी कुंडन गीत होना पसंद कर ले जी इस कार्यक्रम मंच
1: एक धर्मराज जी कचारी जी
0: क्या बात है क्या बात है चलिए अच्छा लगता है गीत तुसो होने मा अच्छा
1: बड़ा अच्छा लगता जी
0: अच्छा अच्छा चलिए ठीक है जी जरूर सुन ले तू सुए गीत
1: धन्यवाद जी
0: श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इस वक्त इंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही ता अक मुके फेरी तुंदा सभी रा बहुत बहुत स्वागत करनो हार्दिक अभिनंदन करनो हाँ तो पहली फरमाइश तो है सब भी ये होने बुने कि नगरोटे था आया धर्मराजे हरी कचहरी पंकज द्वारा ये गीत गुरहा पंकज कुमार सूर्यवंशी बड़ा प्यारा गीत है अपू भी बहुत प्यारे सिंगर थी है लेकिन थी है ता बल्लो मैं कह चुके अब इस फील्ड में शायद नहीं ना भाई, है ना कर का जॉब के सो करू कर दे हिन ता कलाकारी हम हमेशा बोलता कि चलाना के सो थोड़े करी मुश्किल बुझ गन दिया है ना। तो ये सो तो धर्मशाला रे मौसम होगी तुसु रूबरू करो अंदर इस समय 19 डिग्री सेल्सियस तापमान है सो तो, और न मेरी गल करो तो न मैं किया सो कर खन कर का 80% रे आसपास है इस समय धर्मशाला मंच। कुछ एक और मोटी और बड़ी गल्ला तुसु होगी कि न सो असू शेयर करनी हिन सो तो, गगल एयरपोर्ट री बड़ी उड़ान सो तो अब अल्ले तक की असो 3500 उड़ान बुझगिन। यात्री री संख्या भी किया सो अभूतपूर्व इजाफा सो तो 1,63,562 तक पुजी हा। जी बिल्कुल सो तो, और इसी सो के हने और भी बहुत सारी जानकारी जो तुस हो गया सो शेयर करनी साझा करनी ना। अकीति तो है खुश खबरी बल्ला कि क्या बल्ला है, सब तो पहले हॉर्मूज तो के सो भारत रा टैंकर के सो तो सो निकलो हा। जी बिल्कुल, और जी क्या है बाखूबी जान दें कि पश्चिम एशिया में 107 दिन बच गए सो तो तिन्यों गोलद है सीधा बोलो तो है 107 दिन थो कि सो युद्ध जारी हा और ख़त्म होने वा ना के सो ना लेव करता थो है ना। अबे तस युद्ध जो ख़त्म करने वास्ते कि ऐसो अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर कि ऐसो सहमत बुज गए है ना। 107 दिन गोली लैन और अबे बल्लू कर देन कि अबे शांति समझौता कि ऐसो करी लें देन दोनों देश है 19 जून जो कि ऐसो तो सो स्विट्जरलैंड में आकर आधिकारिक समारोह में कि ऐसो हस्ताक्षर करे और अमेरिका रे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है कि सो अपने सोशल मीडिया मंच ट्विटर तो सोशल पर सोशल मीडिया मंच तो कि सो ए बल्लो भी आशो तो कि चलो ए समझौता ज्ञापन रे मुख्य कुछ बिंदु हिन सो तुस हो गया है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले। लेकिन आगाज़ कर लें देन कार्यक्रम रे सो तो आगाज़ बड़ा ज़रूरी है समझौता ही ना हुआ कुछ मुख्य बिंदु इन सो बिंदु तुस हो गया है भी शेयर ज़रूर कर ले। तो ये आगाज कर लेंदे इन कार्यक्रम रहा पहले तो सब बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो के कार्यक्रम हूँ कर दें इंदी अपनी गप्पा अपने वीडियो सेट में वीडियो गुंज धर्मशाला मंच तो लेके चलते तू सब भी यशो तो इस प्यारे दे गीतारी किनारे बने रहे सुसोगे जुड़े रहे सुसोगे रेडियो गुंजन री गूंज सोगे।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धारम शाला तो सब ये ट्यून कर रो रहे कार्यक्रम इस वक्त तो सब हूँ करते निंदी अपने गप्पा अपने आरजे रेडियो जो कि सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव अपने वीडियो सेट मार श्रोतो तो आइया कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बढ़ंदे इन श्रोतो जिला मुख्यालय धर्मशाला रे मैकलोडगंज सालनी रोड पर गया सो लंबा जाम फेवे लगू करदा हा श्रोतो जी बिल्कुल ये जानकारी असू फेसबुक रे माध्यम तो भी किया सो मनु तक पहुँचाने हाँ श्रोतों तो कॉल कर सकते हैं 708-8-8-709 पर नंबर अक मुख है फिर शेयर कर लो 708-8-8-709 पर तुसू तो सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के सो होने सकते हैं इन श्रोतों ता अग मौके फिर बहुत बहुत स्वागत है हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रह सभी हेरने वाले रह सभी श्रोतागण रहा कार्यक्रम जो थोड़ा करे आगू बढ़ेंदे हैं इन श्रोतों और अगली जानकारी की ऐसा तो सो की जरूर शेयर कर दें साझा कर दें इसो की जो फरमाइश रहा दौर है सो भी असू जरूर धीरे धीरे पूरा करता चलना है श्रोतों ता लंबे जाम में आके आसो फंसू कर दें इन मनो और इवन की जो पर्यटक हैं सो भी अभिभावक भी हर कोई की आसो फसू करता है यातायात व्यवस्था की आसो कर नगर का चरमराई गई है श्रोतों जी बिल्कुल जिला मुख्यालय धर्मशाला रे मैकलोडगंज सालनी रोड पर की आसो श्रोतों लंबा जाम की आसो लगू करता जाएंगल फ्राइडे रे बुआ जाएंगल शनिचरा रे बुआ सैटरडे रे बुआ इतवार रे बुआ फिर चाहे तो वह सोमवार रे कर लिया जी बिल्कुल श्रोतों लंबे लंबे जाम में क्या सो मनु फंसू कर दें ट्रैफिक जाम बुच्चू करता है काफ़ी ज़्यादा श्रोतों लंबे समय तक ट्रैफिक जाम किया सो रेव करता है अजस्तों स्थानीय मनु और वाहन चालक जो भारी परेशानी रहा सामना किया सो करना भी करता है अभी तू पता कस क्यों कितना अर्जेंट काम बुनता है ना कस क्यों कितना इंपॉर्टेंट काम अपने अपने काम और अपने अपने काम कार सब व्यस्त बुनते हैं है ना अजकनी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में तू पता कि कस की लै मतलब कोई 10 मिनट भी नहीं हो टाइम नहीं है ना तो ये भी अपने अपने कमा में व्यस्त बुने तुसु कोई बल ला कि हाँ 10 मिनट असू लगा गप्पा मारी ले तो जाने तुसु काम बोला तेने तुस बोलना ना जी 10 मिनट तो बड़ी लगू कर दी ना मारी नहीं गप्पा है ना तो ये कुछ बंदा है शो तो ये बंदा अपना अपना काम सब भी बंदा लेकिन इस बीच के असो मनु जो रुकना प्यो करता है शो तो परेशानी रहा सामना किया सो करना प्यो करता है जाम रहा सब तो बड़ा और अधिक असर किया सो स्कूली बच्चे पर प्यो करता है जी बिल्कुल जो स्कूली बच्चे हैं तिजा पर प्यो करता है सो तो जिन्हों स्कूल में छुट्टी मिलने तो बाद के सो घंटों तक सड़क में क्या सो रेंगना प्यो करता है सड़क में क्या सो फसना प्यो करता है सो तो जानकारी के अनुसार दोपहर 2 से 3 बजे रे बीच के सो जने छोटे बच्चे सहित बड़े जो मोटे बच्चे त्यारे भी छुट्टी भूंदे आ शो तो स्कूल री छुट्टी भूने तो बाद के सो मैकलोडगंज दसालनी रोड में के सो बड़ी संख्या में जो पर्यटक वाहन हैं सो भी खड़ूरे बंदन और फिर इस दौरान यातायात व्यवस्था की सो चरमराई गई है क्योंकि पर्यटक वाहन ऑलरेडी तथों बाद स्कूलों की छुट्टी होंगी तो स्कूलों के वाहन अब चुकेंदे और जस्थों की सो जड़ी 2:30-3 बजे छुट्टी होंगी सो बच्चे समझा 5:30-6 इस लाइन में मतलब 4:30 तो बाद देखिया सो बुझू करते हैं इन शो तो है ना लंबे ट्रैफिक जाम तो किया सो वाकई में दिक्कत तो है यहाँ सब भी हुआ और स्थिति ऐसी है शो तो कि बच्चे समझाई किया 5:30 के करीब जो दसू कर दो 6 बजे के करीब किया सो अपने घर पुजू करते हैं इन शो तो सब भी है कि जो बच्चे रे पेरेंट इन अभिभावक इन है ना पेरेंट भी इन तीन थोड़े करी शिकायत भी इस प्रकार रही करी है कि फ़ायदा की स्कूल मतलब सोचा कि व्यवस्था इस समय जो ट्रैफिक व्यवस्था सो इतनी ज़्यादा इस समय चरमराई के छोरे की पूछा मत लेकिन ये बोने भी आगे जो कि मैं ये भी दस दूस होता हूँ कि थली साइड की सो कर नगर का छुट्टी प्योरी है ना निचले इलाके की सो छुट्टी प्योरी ने और अठेरी वजह था कि अब सब अपनी छुट्टी इंजॉय करने वास्ते किया सो हिमाचल प्रदेश में प्रवेश छुरे था ट्रैफिक इस प्रकार रहा भूना ही यातायात व्यवस्था कर नगर खड्डा के मंगाने हाँ थोड़ा करी सब भी मतलब लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बुच्चू करता जो कि हम भी पिछले 2-3 दिन तो हूणों भी करता है पर्सनली भी हूणों करता कि भाई छुट्टी का 2:30 बजे बुच्चू कर दी तो सो मनो समझा 5:30 बजे घर पुजू करता तो
थोड़ा करी व्यवस्था जो लेकर भी गया सो मुझे लगता कि प्रशासन जो कदम जरूर चुकना चाहिए इस तो। बहरहाल कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा चल रही हैं और तो सब बन रहे इस समय अपने नाचीज सचिन कपूर सो गया जी फरमाइश और दौर पूरा कर देना और होने दे।

0: श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेड़ी गुंजन जहाँ धर्मशाला तो है सब ये ट्यून को ट्रो और कार्यक्रम सचिन कपूर सो के बिल्कुल लाइव हूँ कर देन इंदी अपनी गपा तो सब जरूर जुड़ सकते हैं सो गए 7088879 पर नंबर आख मौके फिर आऊँ शेयर करना हाँ 7088879 पर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं और अपना पसंदीदा गीत के ऐसा हो नहीं सकते अपने क्षेत्र की जानकारी अगे साझा कर सकते हैं गल्ला का ख्याल रहा खास की जानकारी किया सो साझा करने लायक जरूर बहुत जानकारी किया सो दसने लायक जरूर बहुत सो तो हाँ जी चलिए चल दें था अभी तुझे जानकारी थोड़ा करिए हैरानगी बुझाने की बच्चे माँ किया सो तेजी था बड़ू करता हाँ शुगर जी बिल्कुल शुगर री बीमारी की है सो बच्चे माँ ज़्यादा बड़ू कर दिया थायराइड भी करू कर दिया बच्चे जो तंग वे जो चॉकलेटन ये जो आइसक्रीम आ ये जो टॉफिन इति तो लाड़ के आ सो चुकाना पे थोड़ा करे पेरेंट जो महंगा पे करना भाई साहब मोटापा भी एक कारण है बच्चे में मोटापा के आशो तो थायराइड रोग बचगो असामान्य वृद्धि तथा समय तो पहले या देर तो भूने वाले जी और जो जो भी चीज़ आसू पता कि जिस प्रकार हो गए कि बच्चे थोड़ा करे मतलब दस प्रकार हो गए कि सो बच्चे रिएक्ट करू कर दें तो है जानते बुने थोड़े करे बच्चे अब नॉर्मल भी किया सो बुच्छू कर दें है ना ये तू सब भी दसना चाहता सो तो देश भर में विशेषज्ञ चिकित्सा जो विशेषज्ञ हिन त्यारे प्रति की है जन जागरूकता बढ़ाने और समय वेंदे पहचान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल की सुदित्ता अशोतो ये विचार डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद वाजकीय चिकित्सा महाविद्यालय RPGMC टांडा माँ के आसो आयोजित राष्ट्रीय एक मतलब तो सोच लिया कि फंक्शन टाइप छूरत थी वे दौरान किया सो भुआ की धोलदा कि इस समय की असो बच्चे माँ तेजी थो बड़ू करदा शुगर थायराइड भी किया सो तंग करू करदा है ना ये करखा मंथन करने रहा मतलब करखा चिंता करने रहे विषय है ना वैसे तो बंधन की चिंता चेतारे समान है लेकिन इस समय क्या ये चिंता करने रहा विषय आके फोन बुझ गो सो तो और आके इस प्रकार री मीठी चीज है सो बुझ गए पर लिखिए मिस कॉल तो सब विषय तो जरूर कनेक्ट कर सकते हैं जनाब अब बिल्कुल फोन थोड़ा करे ब्राइटनेस मुझे लगता है घट थी टेरी वजह तो फोन ना होनी है सो तो कॉल कर सकते हैं 7088879 पर अपनी फरमाइश के सो होने सकते हैं बहरहाल चल दिन और हूँ दिन तू सब भी पहले इंदे फ्री श्रोता के सो जुड़े गए नमस्ते जी
1: हेलो नमस्ते भाई जी
0: नमस्ते जी भाई जी नमस्ते भाई जी कड़ियों बल्लू दिन जी
1: आओ के बोलते खनारे हो बोले बोलते कटुई हूँ
0: अच्छा क्या बात है ठीक ठाक ना सब राजी बाजी ना
1: हाँ जी ठीक है जी
0: और चलिए आए फेसबुक के माध्यम तो भी लाइव चले आए जी अबे तो है जरूर फिर दस सकते हैं मौके कि कौन बल्लू कर दें अपना शुभ ना प्यारा दे ना और कड़ी थों बल्लू कर दें
1: संजय जी हाँ जी
0: संजय जी क्या कर दें तुसे
1: अलवारा काम करता जी
0: अच्छा क्या बात है संजय जी कदे हाँ जी अच्छा क्या बात है
1: हंगल
0: भी बनंदे
1: जी
0: क्या बात है ता संजय तो है अपना प्यारे दे ना दसो संजय जी ये दस कि कदे गो आज को ना दिन तुंदा पहले ते दस सासु
1: बढ़िया रे अक लाइट ना बस लाइट है भी प्रॉब्लम गा
0: हां लाइट है तुसु ये दस इते थे ना कि लाइट ना होने तुंदी किनारी
1: बस काम थोड़ा अपना रही ना सो काम रही करने हो अब लाइट चली तो करना पैना
0: लाइट जी 5:30 बजे बाद उम्मीद है कि चली ने या अगर नहीं ली अच्छा। तो जी घर समाप्त ना होता वैसे उम्मीद है कि 5:30 तो बाद गया सो लाइट 100% चली ने जी जो असू तक जानकारी पूछ रहा है तो उसू तक यही पहुँचाई थी और 17 तरीक जो भी दत्ते गया दत्ते भी लाइट नहीं है सो भी असू जरूर दस रहे कि कड़ी कड़ी नहीं है ठीक है
1: जी
0: अदते जिन तक मुझे याद इच्छू करते अपना इस किनारी रोड़ा ना बोने सैकड़ हाट चौंक पुछ गो ए सिद्ध बाड़ी पुछ गए इन दी है ना इस किनारी की इस दत्ते लाइट ना बोने
1: अच्छा
0: जी, तो संजय जी कौन दिन गीत होना पसंद कर ले?
1: चंबे पतना,
0: चंबे पतना
1: कन्या राणे रा,
0: कन्याल राणे जी रा ये गीत है चंबे पतना दो बेड़ियां जरूर।

0: जी
1: हाँ जी, हाँ जी सर जी, राजी बाजी जी, अतुसा सर जी, ठीक ठाक ना?
0: बढ़िया जी, तुंदा सब भी आशीर्वाद आ।
1: चलो परिवार का आशीर्वाद रहना चाहिए सर जी।
0: अरे कमाल है, ऊपर वाले रहता है यार। चलो
1: हाँ
0: पर जो
1: जी, हाँ
0: इंदे
1: जी,
0: इंदे इंदे बुजुर्ग ने तिहारा
1: बुजुर्ग ना
0: आशीर्वाद भी
1: सियाने
0: बड़ा
1: ना।
0: बड़ा जरूर है।
1: हाँ
0: मोटे
1: जी,
0: ना जो खास कर है ना जी, तिहारा
1: हाँ जी, हाँ जी सर जी,
0: आशीर्वाद भी बड़ा जरूर है
1: हाँ जी सर जी,
0: जी। ता कौन बोलूं देन और कड़ी थो बोलूं देन जनाब,
1: सुनील कुमार बोल रहा है, कोठिया तीज रोड पे सर जी।
0: कोठिया जलोट
1: हाँ जी सर जी,
0: शक दे या मौसम
1: मौसम आज धूप खिली है सर जी। हाँ
0: धूप लग रही है
1: जी,
0: काफी
1: थोड़े
0: तेज तेज
1: बीच के बीच
0: तरार वाली
1: बदल
0: धूप।
1: भी थे। हाँ
0: हाँ जी
1: जी सर जी,
0: बिल्कुल, काफी तेज तरार वाली धूप तो नहीं है।
1: नहीं तेज थी सर जी दिन आज। हाँ
0: अच्छा
1: जी, भी आगा भी आगा ही, मतलब थोड़ा बदल बुदल गए फिर था, साफ है मौसम। हाँ
0: अच्छा
1: जी सर जी,
0: चलिए जनाब, कुंडने की थोड़ा पसंद कर ले। रणिया
1: सुनील राणा जी जाया आवाजा जाया रणिया खेरा। हाँ
0: वो खेरा मेला,
1: जी सर जी,
0: क्या बात है। चलिए जरूर होने ले तू सुई गीता है जी।
1: धन्यवाद सर जी, नमस्ते सर जी।
0: धन्यवाद जी, नमस्कार नमस्कार। श्रोता एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेणी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम में हिंदी अपनी गप अगेन सो चल रही। श्रोताओं तो गल है समझो तेरी करो कर दी थी, ईवान अमेरिका युद्ध में शांति पे या और दुनिया में क्या सो रहा था श्रोताओं, ये वाकई में राहत भरी गल की सो जरूर है ना। लेकिन तू सब ये दसना चाहता कि समझौते में क्या हुई है श्रोताओं, सभी मोर्चे पर सेना की गतिविधि तुरंत और हमेशा वास्ते किया सो रुकना चिंदिहीन है ना, और सोगी सोगी हरमूज जो ईवान रे प्रबंधन में 30 दिनारे अंदर फिर थों खोली दीना चिंदा है ना। अमेरिका त्राई 30 दिना मा के सो ईरान रे सभी बंदरगाह मा के सो नौ सैनिक नाकाबंदी किया सो हटाने हाँ अमेरिका किया सो 30 दिन अंदर किया सो ईरान रे सभी बंदरगाह थों जो नौ सैनिक नाकाबंदी आ सो हटाने हाँ है ना। इन श्रोता सो की जुड़ रही थी है तो सब भी जुड़ी सकते हैं 7 0 8 8 7 0 9 1 पर श्रोताओं, और बहुत सारे समझौते पर के ऐसो गल भोए श्रोताओं और भी इस प्रकार रहें, लेकिन सब भी अच्छी और सभी अहम गल के मुझे ये लगे कि चलो दुनिया में राहत भरी सांस की ऐसो दुनिया भर में हाँ श्रोताओं, और अबे दुनिया भर रहे जहाज अबे सुरक्षित की ऐसो यात्रा शुरू कर सकते हैं। और लेकिन तो आपको सोचा कि बहुत अच्छी गल है श्रोताओं को, जो कि लड़ाई हो हमेशा बलनो हाँ, ये तो चलो देश देश रे लड़ाई थी, ये युद्ध तो काफ़ी भयंकर युद्ध तो, और इति अंदर भी न जाने कितने ही जो सैनिक ने तैयारी जान के श्रोताओं, कितने ही परिवार के न सो अपने बच्चे हो गए कि सो बिछड़े गए न है ना, लेकिन सो है ना बे अब एट लास्ट चलो चीज़ा ठीक बुझगान, ऐसा सब यही प्रे कर देन यही प्रार्थना कर देन कि चीज़ ठीक बुझगान, लेकिन जो जानी चली गई सो तो चली गई ना सो वापस थोड़ नहीं सकती, जो अपने परिवार तो बिछड़ी गोआ सो तो बिछड़ी गो सो वापस थोड़ नहीं सकता वह तई हमेशा वही बलू सोतों, ये तो देश भी लड़ाई है घरे घरे घरे मंज भी है ना सरीका मंज भी खास कर लड़ाई ठेरी बुंदी आ ना, लड़ाई तो ठेरी बुंदी आ कि मतलब जमीन ज़्यादा चलेगी बीड़ खूनी ते ज़्यादा है जमीन ज़्यादा किया सो सरीको चलेगी बीड़ ज़्यादा खूनी तिया इतेरी लड़ाई था इन है ना, घर घर मंज भी किया सो बड़े क्लेश उठ गए कि मुंजो ही को बली था मुंजो ही को बल्लू ये ना ही कर सकते थे आऊँ ही को करूँ, तो ये लड़ाई झगड़े बुंदे इन शोतों हर जगह बुंदे, लेकिन लड़ाई झगड़ा के आज सो शोतों कभी भी सल्यूशन नहीं है जलने किया सो कभी भी सल्यूशन नहीं किसी भी रिलेशन में। मेरा एक्सपीरियंस खुद रहे बलदा हा कि अगर तुसु कोई भी रिश्ता चाहे सो तुंदा कड़िए कोई भी रिश्ता तुसु सो गिना तुंदे अपने परिवार रा चाहे सो तुहे जड़ी काम करू कर दे तड़िया रा रिश्ता चाहे सो अन्य कोई भी रिश्ता हा, रिश्ते ताई बेहतरीन बनते ने जहने दोनों साइड थों किया सो प्यार मुड़ा है ना, जहने दोनों साइड थों किया सो सारा मुड़ा दोनों साइड थों कि दुए सपोर्ट मुड़ा, ता रिश्ते बेहतरीन बनते हैं ता रिश्ते अच्छे बनते हैं है ना। अगर आखी अके बंदा की असु कर दे रहे लशो तो दुआ ना हो तो फिर रिश्ता बेहतरीन ना बन देन। बहरहाल कार्यक्रम सचिन कपूर सो की हूँ कर देन तो ऐसा बिल्कुल लाइव अपने अपने।

0: श्रोता एफ एम एंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून को रो और आम तो सो गीत अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर मौजूद था। बहुत बहुत स्वागत है जनाब आज मौके फिर सभी होने आ रहा ता कार्यक्रम में स्वागत है बुजुर्गो सभी रहें श्रोतागण असुगी कनेक्टेड हैं पूछ लें देन कौन बल्लू देन तो ये श्रोता उन कार्यक्रम जो थोड़ा करिए और आगू बढ़ंदेन और इन द अगले श्रोतागण असुगे कनेक्टेड हैं पूछ देन कौन बल्लू देन और कड़ी थो बल्लू कर दे हैं। नमस्ते जी
1: सचिन जी नमस्कार प्रणाम
0: नमस्कार जी नमस्कार ठीक ठाक राजीव बाजी
1: बस जी दुआ है आप लोगों की आपका प्यार है जो खींच के लटा इस तरफ वो अपनी तरफ
0: और जी कौन बलून देना और कड़ी थो बलून देना
1: मैं अनिल जलसा जी
0: अनिल जी कड़ियों बलून देन
1: स्टेडियम में पल रही
0: हाँ जी
1: स्टेडियम के कलर है स्टेडियम के साथ ही एडजॉइनिंग एरिया
0: अच्छा अच्छा हाँ। जी जी अनिल जी जी ठीक ठाक राजीव बाजी हेलो जी अनिल जी आवाज तुंदी घटी कर दिया
1: हाँ जी अच्छा
0: आवाज घटी कर दिया जी अनिल जी
1: अच्छा।
0: तो इस कार्यक्रम सो की जोड़ देन गदयाली भाषा तो सु पूरी इंदी बोली की सु पूरी समझ चली इंदी और बड़ी
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण से समझ जाता हूं बट अच्छा। मैं बोल नहीं सकता
0: बस बल्ली नहीं सकते बाकी समझ पूरे इंडिया
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि मैं बचपन से ही ना
0: हाँ जी
1: मतलब पूरे इन्हें लोग चले आ मतलब
0: अच्छा
1: अजय पहाड़ी लगा बोल रहा हूँ ये माफ करना अच्छा। तो गलती है माफ कर लेना
0: ना ना
1: मतलब बचपन से मेरा बचपन में था ना
0: हाँ जी
1: तो हम लोग का भी चीज निकलिया मतलब अच्छी चीज निकलिया स्कूलिंग सभी कॉलेज सब अच्छी था सारा ये मेरा
0: हाँ जी
1: हाँ बाकी जन्म स्थान मेरा पंजाब का है
0: अच्छा
1: मैं ये गल कि मैं जो छोटे मैं थोड़े विषय बारे थोड़ा फीडबैक दूंगा थोड़े
0: जी
1: हम पहले बोले डायबिटीज जिसे हम बोल रहे मधुमेह
0: जी जी जी
1: उसके बारे थोड़ा मैं प्रकाश से पढ़ता हूँ इन सचिन जी कि मैं तुम बोले ठीक है मतलब अजकल वक्त लोगों जो मधुमेह या डायबिटीज होया कर दी ठीक है
0: जी बिल्कुल
1: वो बोले कि बचपन से बच्चे भी होया कर दी
0: जी
1: है ना ठीक है इसका मैं आज के अपनी पीढ़ी चल सकता अपनी पीढ़ी अपने जनरेशन की गल करता आज से 4 साल पहले ठीक है क्या उस वक्त डायबिटीज थी नहीं बिल्कुल नहीं थी।
0: बिल्कुल भी ना थे 4 साल 5 साल पहले था वाकई में
1: ठीक नहीं थी ना
0: होने भी ना
1: थे मैं कुछ 40 साल पहले कर रहा उस टाइम बिल्कुल नहीं थी
0: 40 साल पहले तो बिल्कुल ही ना थे जी आऊँ अच्छा? तो बोलूँ चूट 5 साल अब वाकई में 5 साल पहले भी मतलब है इतने ना होने थे कुछ 50-70 साल तो आई थिंक 2020 हम बाद किया
1: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं उस बिल्कुल नहीं थी ना उस पर इतनी बड़ी लाइनें लग रही हैं ना मतलब कुछ भी ऐसा कोई ऐसा ना रोगी नहीं उनका हर किसी को जीवन खान पान दिनचर्या है ना
0: जी
1: सब बड़ी डिस्टर्ब है
0: बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है दिनचर्या बड़ी डिस्टर्ब है इनके
1: डिस्टर्ब है तो कहना है जो था मोबाइल के कारण टाइम ही नहीं दे पाएगा नहीं अपनी
0: एग्जैक्टली
1: अच्छा उस वक्त ना था सारे सेल फोन थे हैं टीवी थी सब बड़े घटी घटी है ना
0: सेल फोन बिल्कुल ना थी सेल फोन भी अच्छा। किया सो वाकई बड़ा विशेष बीमारी या सुसभ्य वास्ते
1: सिंपल रेडियो होती थी
0: हाँ रेडियो तो बस हाँ इन द रेडियो
1: रेडियो थे तो रेडियो सारा रिक्रेशन था साधन या एंटरटेनमेंट था साधन था
0: बिल्कुल
1: कुछ भी नहीं था
0: बिल्कुल
1: पर सारा ये था कि उस फिजिकली एक्टिविटी बहुत थी
0: बहुत ज्यादा
1: अच्छा
0: खेती बाड़ी हाड़ू लाड़ू
1: एक्टिविटी इतनी सी मतलब कि जिसे बोल रहे ना क्या बोल रहे उखड़िया मूले धान कटवाने मतलब कणक बीजनी और चलाना खुद ही है सब मतलब मैनुअल उस टाइम ना तो ना ट्रैक्टर थे ना कुछ रहने दे रहा कुछ नहीं
0: कुछ होना तो
1: सुबह स्कूल जाने पहले गा भी कट्टी जाना
0: जी
1: है ना सिर्फ गाय वास्ते कटती है ना गोबर में आपको फेंकना हर काम आपको करना है तो मतलब डायबिटीज की चीज अगर जितना थोड़ा खाएंगे जितना थोड़ा इनटेक करा कर दे उसी इनटेक जो उसका हम बर्न करा है ना, उस कैलोरी की जिन्हें जो कैलोरी लिया कर दे उसी वर्ण करा तो डायबिटीज होनी ही नहीं है। वो तो खाना खाना खाना इनटेक ही करना तो किसी बर्न करना ही नहीं है तो कोई डायबिटीज होनी है।
0: बिल्कुल सही गल है, एग्जैक्टली जी
1: बिल्कुल सही है ना
0: जी।
1: तो मेरा कहने थोड़ा भावार्थ या तात्पर्य यही था कि अपना जो दिनचर्या बदला कुछ भी नहीं होता। मतलब सारे दिखा ना खड्डा जाना उस टाइम खड्डा थी ना तो खड्डा लाने खड्डा स्विमिंग करनी आपू ही सब कुछ करना तो मतलब कुछ भी नहीं था। वर्कआउट तो रहा ही नहीं बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल ना वर्क था बिल्कुल भी नहीं। चलिए जी, समय रहा थोड़ा करे अभाव अदूस हो गया है, जरूर कनेक्ट हो लेद वाले है ना जी। और समय समय पर तो है इस कार्यक्रम से होगी जुड़ते जी,
1: उस वक्त थोड़ा बड़ा बड़ा धन्यवाद है,
0: तुम्हारा भी धन्यवाद है जनाब।
1: धन्यवाद
0: जी। तो श्रोतों एफ एम बैंड 91.2 MHz पर तो ऐसा बन रहे रेडी गुंजन धर्मशाला सो गया और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा के अनुसार चल रही है। आइए जी, कार्यक्रम जो हगो बढ़ते हैं और फरमाइशरा दौर किया सो पूरा कर दें, बने रहे तो सब आरजे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने बन रहे और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रे।

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্জ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা 2020 উনকে রোর শত মাবে আবাক তুমি বেশি গত সুসবিত হোম অলবিদা তুসু সবি যো অলবিদা বলনে বা তুসু সবিত হোম इजाज़त लेने रख कहते कहते बस ये बोलना चाहूँ श्रोत हूँ कि तो सब श्रोता के अनुसार खुश रहा तंदुरुस्त रहा अपने घर मंच मस्त रहा और बुजुर्गारी सेवा करते रहे आपू मंच प्यार की असो जरूर रखा आपू मंच लगाव की असो जरूर रखा और जो कम आऊँ हमेशा बोलना जो कम प्यार होगी वो सकता श्रोत हूँ जो रिश्ता प्यार होगी निभी सकता हा तस रिश्ते में अगर तो है थोड़ा बहुत भी तस्वीर खींच लै तान लै या अपनी चल ले तो फिर तो रिश्ता ज़्यादा दिन ना टिकता चाहे फिर सो रिश्ता कोई भी कोने बुआ चलिए तो हम सचिन कपूर ले लेने तो सुतो इजाज़त नमस्ते धर्मशाला।

0: हर घर सूर्य घर।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 जन कल्याण के।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी है। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: यार, इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिन्हें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँगी। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। एक काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना RJ वेडियो, जो कि सचिन कपूर को आपने भी ट्यून किया है आपके अपने वेडियो गुंजन में। तो बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतागण का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आई शो तो सबसे पहले तो आपको बिल्कुल हम धर्मशाला में, और सबसे पहले जानकारी जो है वो मौसम की होती है। तो इस समय जो है श्रोतों, आज 16 तारीख है श्रोतों, और इस समय 6:06 पर जो धर्मशाला का टेम्परेचर है वो है 17 डिग्री सेल्सियस। जी बिल्कुल। और ह्यूमिडिटी की बात करूँ, यानी कि नमी की बात करूँ, तो नमी जो है वो इस समय 74% है। ये नमी है धर्मशाला में इस समय बनी हुई। देखिए, बहुत चाव रहता है हम सभी को भी कि सबसे पहले हम धर्मशाला का मौसम जो है उसके बारे में जानें, क्योंकि यहाँ का मौसम आप सभी बखूबी जानते हैं कि कुछ पता नहीं है कि कब क्या कहाँ से बादल इकट्ठे हुए और बरसात जो है वो होगी, है ना। ये तो हम सभी बखूबी जानते हैं कि कुछ पता नहीं चलता भाई साहब धर्मशाला की बरसात का, कि कब कहाँ कैसे कहाँ से आ टपकी कहाँ से आई, वो चंबा से आई, भरमौर से आई, या फिर नदौन से आई ये हम नहीं कह सकते। तो चलिए, ये हमने कहना भी नहीं है, ये धर्मशाला का इस समय का मौसम है श्रोतों। बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हम आप तक पहुँचाएँगे, बहुत सारी जानकारियाँ हैं श्रोतों जो हम आप तक पहुँचाएँगे और रूबरू करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले और अच्छी पूरी दुनिया के लिए, देश भर के लिए जो है, हमारे देश के लिए भी और अन्य बाकी देशों के लिए भी जो है दुनिया भर में राहत है। राहत यह है कि अमेरिका और ईरान युद्ध में जो है वो कहीं ना कहीं शांत हुआ है। जी बिल्कुल, दोनों देशों ने 19 जून को जो है वो स्विट्ज़रलैंड में समझौता ज्ञापन पर कर हस्ताक्षर जो है वो करेंगे, है ना जी। और ये बड़ी अच्छी बात है। और ट्रंप बोले, दुनिया भर के जहाज अब सुरक्षित यात्रा शुरू करें। जी बिल्कुल। तो चलिए, पश्चिम एशिया में जो कुछ भी हो रहा था वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। करीबन 107 दिन से जारी युद्ध ख़त्म होने को लेकर अब अमेरिका और ईरान शांति समझौते पर सहमत हो गया है। तो ये हर किसी के लिए पूरे देश भर के लिए जो है वो ये वाकई में खुशखबरी है श्रोताओं, देश भर के लिए, दुनिया भर के लिए ये खुशखबरी है। तो चलिए जी, आगाज़ करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ, और आगाज़ के बाद श्रोताओं आप सभी को लेके चलेंगे अन्य जानकारियों की ओर। बने रहिए हमारे साथ, यूं ही

शत FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। देखिए हमेशा कहता हूँ खुश रहना, तंदुरुस्त रहना जो अब बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, गुड इवनिंग धर्मशाला में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं, और कुछ एक जानकारियों की और है वो आपको लेके चलते हैं। श्रोतम, हिमाचल प्रदेश सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसके दायरे को सीमित कर दिया है। जी बिल्कुल श्रोतम, एक अधिसूचना के अनुसार अब 18 से 20 साल आयु वर्ग की युवतियां जो है वो इस योजना के तहत मिलने वाली 1500 रुपये प्रति माह की सहायता राशि के लिए पात्र नहीं होंगी। जी बिल्कुल, योजना का लाभ अब केवल 21 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिला को मिलेगा। श्रोताओं, इसके अलावा 2 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाले परिवारों की महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, यह हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो कुछ एक गहरे फैसले लिए गए हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं श्रोताओं। जी बिल्कुल श्रोताओं, इसी के बाद स्कूल ड्यूटी के बाद जनगणना करने के आदेश चंबा ज़िला में ना बदलने का मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुंच गया है। जी बिल्कुल, स्कूल ड्यूटी के बाद भी जनगणना करने के आदेश चंबा ज़िला में ना बदलने का मामला जो है वो हाईकोर्ट पहुँच गया है। जी बिल्कुल, इसी तरह से श्रोताओं अब देखिए, अगर जो आदेश मिले हैं उनको पूरा करना जो है वो बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है, इवन कि इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है अच्छा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन का हो, अच्छा व्यक्ति वही है जो उसको फॉलो करे, जो रूल को फॉलो करे, जो आदेश मिले हैं उनको अच्छी तरह से फॉलो करे, उनको उनकी गाइडलाइंस को जो है वो फॉलो करे। बहरहाल आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने रेडियो सेट पर रेडियो गुंजन धर्मशाला में। श्रोतों कहते हैं कि जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं, कि जितना दिया मेरी माँ ने मुझको उतनी तो मेरी औकात नहीं, ये तो कर्म है मेरी माँ का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला का। अन्य जानकारियाँ आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे श्रोताओं, लेकिन आइए लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूं ही।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना आरजे वेड़े जो कि सचिन कपूर को वेड़ी गुंजन धर्मशाला में, है ना जी, किया है ना ट्यून आप सभी ने। चलिए, तो कहते हैं कि लाइफ को अगर ना हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, तभी लाइफ जो है वो बेहतरीन बनती है, तभी चीज़ें जो है वो थोड़ा सा अच्छी लगती हैं और सूटेबल लगती हैं। क्या बोलते हो? अगर लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है शोधों चीज़ों को लेकर तो चलिए, लाइफ को डिफ़िकल्ट नहीं बनाना है, लाइफ को इजी बनाना है, आसान बनाना है। और इसके लिए बेशक हमें अपने साथ काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, नियंत्रण काम करते रहिए। अपने आप को खुश रखने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन ज़रूर कीजिए। अपने बिज़ी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, और खुश जो है वो ज़रूर रहिए। तो जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है वो चीज़ आफ्टर योर वर्क ज़रूर करें जी। बहरहाल, हम चलते हैं आगे और कार्यक्रम में अब आपको श्रोताओं अगली जानकारी के साथ जो है वो रूबरू करवाते हैं। आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। चलिए, तो लेके चलते हैं आप सभी को श्रोताओं अगली जानकारी की ओर। कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे श्रोताओं। और जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि स्कूल ड्यूटी के बाद जो है वो जनगणना करने के आदेश है, चंबा ज़िला में ना बदलने का मामला जो है वो हाईकोर्ट में पहुंचा है। श्रोताओं, शिक्षक संघ ने हाईकोर्ट में इस याचिका दायर की है। राजकीय टीजीटी कला संघ के महासचिव विजय ने जो है वो हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। जनगणना निर्देशक की को रिपोर्ट देने के बावजूद अन्य ज़िलों की तर्ज पर कार्रवाई नहीं होने पर याचिका दायर की गई है श्रोताओं। बीते दिनों कुल्लू और हमीरपुर ज़िला प्रशासन की ओर से इस आदेश को जो है वो कुल्लू चंबा और हमीरपुर में ज़िला प्रशासन ने शिक्षकों से स्कूल ड्यूटी के बाद जनगणना करने को कहा था। कौन कौन से ज़िला थे? हमीरपुर, कुल्लू, हाँ बिल्कुल, कुल्लू, हमीरपुर ज़िला प्रशासन ने जो है वो इन्हें ड्यूटी करने को कहा था सरकार के आदेश के बाद भी श्रोताओं। और इसी के साथ अन्य जानकारी भी है जो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे श्रोताओं। लेके चलते हैं आप सभी को इस जानकारी की ओर। ये बड़ी अहम जानकारी है, बड़ी इम्पोर्टेंट जानकारी है श्रोताओं। और इस जानकारी को मैं चाहता हूँ कि आप सभी ज़रूर शेयर भी करें, है ना। ये जानकारी जो है वो ज़रूर मुझे लगता है कि हिमाचल के सभी लोगों तक जो है वो ज़रूर पहुँचनी चाहिए। और बड़ी अहम जानकारी है श्रोताओं। प्रदेश की जितनी भी दुकानें हैं, है ना, जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर अगर आपको समोसे, पकोड़े, जलेबी, परांठे या टिक्की अखबार में लपेटकर या अखबार के कागज़ पर रखकर ग्राहकों को परोसते हैं श्रोताओं, तो अब सावधान हो जाइए। ऐसा करना ना केवल लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ है, बल्कि कानूनन अपराध भी है, जिसके लिए जेल और 5 लाख रुपए तक जुर्माना जो है वो हो सकता है जी। बिल्कुल, हिमाचल उपभोक्ता संरक्षण परिषद ने प्रदेश के सभी दुकानदारों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नियमों का सख्ती से पालन करने को जो है वो कहा है। तो अगर आपको भी कोई दुकानदार समोसा या पकोड़ा या जलेबी या अन्य कुछ भी चीज़ जो है वो अखबार में लपेट कर देता है, तो ये आपकी सेहत के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है, जो मुझे लगता है आप सभी लोग नहीं चाहते होंगे कि आपकी सेहत के साथ जो है वो इस तरह का खिलवाड़ हो, है ना। और अब अगर देते भी हैं तो ये अपराध, कानूनन अपराध भी है और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी है श्रोताओं। इस बात का खास ख्याल ज़रूर रखें। बहरहाल, आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। आइए लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। और...

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: दोस्तों, क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन संस्थान की तलाश में हैं? तो आज ही जुड़िए GGI के साथ, यानी गुलजार ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लेकर आया है आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका और दें अपने करियर को सफलता की एक नई उड़ान। GGI आप सभी को दे रहा है NAC+ मान्यता के साथ विश्व स्तरीय शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर। 540+ टॉप कंपनियां और 1250+ से अधिक प्लेसमेंट ऑफर्स, 72,00,000 पर एनम तक का उच्चतम पैकेज प्राप्त करने का सुनहरा अवसर। भविष्य की तकनीक और आज के कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI एंड डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, और साथ ही सीधे एक्सपर्ट से सीखें IBM, इंफोसिस, स्प्रिंग फोर्ड और LinkedIn लर्निंग जैसे दिग्गजों के साथ विशेष सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग, हाईटेक लैब, स्मार्ट क्लासरूम और 24/7 वाईफाई सुविधा, घर जैसा सुरक्षित और आधुनिक होस्टल वातावरण। GGI, जहां शिक्षा सिर्फ डिग्री नहीं आपकी पहचान बनती है। अपने सुनहरे भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाएं, तो आज ही जाएं Apex+ पॉइंट ऑथराइज्ड एडमिशन सेंटर नियर शर्मा बेकरी कॉलेज रोड सिविल लाइन धर्मशाला। इनका नंबर रहेगा 9882069977। नंबर एक बार फिर से 9882069977।
3: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर AC चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
4: श्रोता FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना आरजे वीडियो, जो कि सचिन कपूर को आपके अपने वीडियो गुंजन धर्मशाला में, और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना सचिन कपूर। चलिए चलते हैं कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोता, और अन्य जानकारियों के साथ जो है वो अपने श्रोताओं को रूबरू करवाते हैं। जी बिल्कुल श्रोताओं, गग्गल एयरपोर्ट की बड़ी उड़ान, अब तक पौने 3,000 उड़ाने। जी, गग्गल एयरपोर्ट आज राज्य का सबसे व्यस्त और व्यावसायिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हवाई केंद्र बनकर उभरा है श्रोताओं। ये बात भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के सिविल हवाई अड्डा गग्गल के निर्देशक अमित सकलानी ने कही है श्रोताओं। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि वर्तमान में गग्गल एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा पर मनाया जा रहा है। यात्रियों के स्वागत के लिए हिमाचली संस्कृति की झलक प्रस्तुत की गई है। मानवी के नेतृत्व में शिल्पा ठाकुर, मुस्कान तथा नन्ही कलाकार अनाइता के पारंपरिक वेशभूषा से लोक नृत्य जो है वो प्रस्तुत कर यात्रियों का मनोरंजन किया जा रहा है श्रोताओं। अमित सकलानी ने बताया कि जून 2014

मई 2026 तक के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यों के परिणाम स्वरूप गगल एयरपोर्ट ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। आंकड़े के अनुसार वर्ष 2014-15 में जहां वार्षिक यात्री संख्या 55,481 थी, वहीं वर्ष 2025-26 में ये बढ़कर 163,572 तक पहुंच गई है। इस प्रकार यात्री यातायात के करीब 195% ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई है। श्रोताओं, इसी अवधि में वार्षिक उड़ानों की संख्या 1,244 से बढ़कर 2,720 तक पहुंच गई है, जो हवाई अड्डे की बढ़ती उपयोगिता और लोकप्रियता को दर्शाती है। श्रोतों, चलिए कार्यक्रम गुड इवनिंग धर्मशाला यूं ही चलता रहेगा। आपके अपने वीडियो सेट पर ये जानकारियां यूं ही चलती रहेंगी और गीत संगीत भी यूं ही चलता रहेगा। बने रहिए आज सचिन कपूर के साथ गूंज अपने बनी की।

शोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम में। आयुषतों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कार्यक्रम में अब अन्य जानकारियों के साथ आप सभी को रूबरू करवाते हैं श्रोताओं। तो जाम की परिस्थिति जो है वो कम नहीं हो पा रही है भाई साहब। जी बिल्कुल, ये लंबा जाम जो है वो ज़रूर लग रहा है श्रोताओं, और ये दिक्कत भी दे रहा है, ये दिक्कत दे रहा है वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्थानीय लोगों को जो है वो ये दिक्कत दे रहा है श्रोताओं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और लंबे जाम से जो है वो काफ़ी टाइम से जनता परेशान है, हरासमेंट से जो है वो भरी हुई है जनता इस समय श्रोताओं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ, जनता वाकई में ही थोड़ी सी हरास है और ख़ासकर जो उपली इलाके हैं वो काफ़ी लंबे जाम से जो है वो फंसे होते हैं। काफ़ी लंबा जाम जो है वो ऊपरी इलाकों में जो है वो लगा रहता है, वो हमारे ही धर्मशाला के यानी कि मैकलोडगंज खड़ा डंडा रोड है ना, चर्च वाला रोड, इन रोड पे आप देखना कि जाम काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चला रहता है। बात अगर आप वीकेंड की करें तो बात ही निराली है, लेकिन अगर आप सोमवार मंगलवार की बात भी करें तो अभी भी धर्मशाला क्षेत्र में जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाम है। कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई लग रही है इस समय। मैं आप सभी तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाना चाहता हूँ श्रोताओं। आप सभी बने हुए हैं इस समय वेड़ी गुंजन धर्मशाला के साथ और कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड इवनिंग धर्मशाला। तो श्रोताओं, जिला मुख्यालय धर्मशाला के मैकलोडगंज दसालनी रोड पर जो है वो लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लंबे समय से जो है वो ट्रैफिक जाम रह रहा है श्रोताओं, जिससे स्थानीय लोग काफ़ी ज़्यादा लोगों में गुस्सा भी है और लोग थोड़े से हरास भी हैं श्रोताओं इस चीज़ को लेकर, और स्थानीय लोगों को जो है वो वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना जो है श्रोताओं वो करना पड़ रहा है। जाम का सबसे अधिक असर स्कूली बच्चों पर जो है श्रोताओं मैं बताना चाहता हूँ वो पड़ रहा है, जिन्हें स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद भी घंटों तक सड़क पर फंसे रहना पड़ रहा है श्रोताओं, और ये उनकी मजबूरी इस समय बन चुकी है। जानकारी के अनुसार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच छोटे बच्चे सहित बड़े छात्रों को भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैकलोडगंज दसालनी रोड में बड़ी संख्या में जो है वो पहुंचे पर्यटक वाहन से सड़क पर पहुंच गए हैं श्रोताओं, और इस दौरान यातायात व्यवस्था चरमरा गई श्रोताओं और लंबे ट्रैफिक जाम, लंबा जो है वो ट्रैफिक जाम लग गया श्रोताओं, है ना जी। स्थिति ऐसी रही कि कई बच्चे शाम 5:30 बजे के बाद ही अपने घर जो है वो पहुंच पा रहे हैं। अभिभावकों में से बिट्टू पठानिया, सुविंदर कुमार, के एस संब्याल, अमर कपूर, नीतू देवी व अनीता शर्मा ने बताया कि जाम के कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कई स्थानों पर वाहन रेंग कर चल रहे हैं और जिससे सड़क पर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से यातायात व्यवस्था जो है वो बेहतर बनाने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि मैकलोडगंज दसालनी रोड पर पर्यटक सीजन और बढ़ते वाहनों के दबाव के कारण अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में प्रशासन को स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि भविष्य में लोग और स्कूली बच्चों को इस तरह की परेशानियों का सामना जो है वो नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल श्रोताओं, और इससे पहले भी वीकेंड के दौरान धर्मशाला खड़ा डंडा रोड मैकलोडगंज मार्ग में जो है वो इंटरलॉक टाइलों के कार्य व ओवर क्राउडेड होने के कारण भी जो है वो इस तरह के ट्रैफिक जाम जो है वो रहता है श्रोताओं, और जिससे लोग भी, पर्यटक भी और बच्चे भी घंटों जो है वो जाम में फंसे रहते हैं, और कहीं ना कहीं ये अब मजबूरी सी लगती है उन लोगों को कि हमारी मजबूरी है और हमें आदत डालनी चाहिए, है ना। तो SHO धर्मशाला
संजय कुमार ने बताया कि मैकलोडगंज दसानी रोड में पर्यटक वाहनों के पहुंचने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी थी। मौके पर पुलिस बल को भेजकर जल्द ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। लोग खूब परेशान हुए, काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। चलिए, पुलिस बल वहां पर पहुंचा, उसके बाद जो है वो चीज़ें तरीके से चलने लगी, नियमित तरीके से जो है वो चलने लगी, सुचारू तरीके से जो है वो चलने लगी। लेकिन उससे पहले काफ़ी टाइम से जो है वो स्कूली बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वहाँ के लोकल्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, और इवन कि जो सैलानी आ रहे हैं, जो पर्यटक आ रहे हैं घूमने के लिए, वो भी तो परेशान है। ये भी एक चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए जो भी धर्मशाला घूमने आता है वो ज़रूर मैकलोडगंज, भागसू, नड्डी, डल लेक, है ना, इन जगहों पर ज़रूर जाता है, स्तोबरी, इन जगहों पर जो है वो ज़रूर जाता है। लेकिन इन जगहों पर ही जो है, इन प्लेसेस पर जो है वो अत्यधिक जाम देखने को मिलता है श्रोतों, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था चरमराई सी लगती है। चलिए, अपील की है प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो है वो कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकाले और ट्रैफिक व्यवस्था को जो है वो सुचारू रूप से चलाए। आप यूं ही बने रहिएगा वीडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। आइए आपको लेके चलते हैं श्रोतों अब इस प्यारे से गीत की ओर।

0: हेलो, नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है इस गीत के बाद। और आइए, अब वक्त हो चुका है, श्रोताओं 7 बज चुके हैं, तो रेडी गुंजन धर्मशाला में अब वक्त हुआ है समाचारों का। आप सभी यूं ही बने रहिए आपके अपने रेडी गुंजन की गूंज के साथ।
1: 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। एवियों में समय सम्मेलन का आउटरीच सत्र चल रहा है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन में आज अमरीका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने का प्रयास किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी अब यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UGC परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता को बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेशों को भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है। इसमें गांवों में अब कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकी कार्य है, जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर ही किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री छाया श्रमिक योजना के अंतर्गत दार्जिलिंग पहाड़ियों और तराई डुअर्स क्षेत्र में बंद पड़े 25 चाय बागानों को फिर से खोलने के प्रयास किए जाएंगे। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनन से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनन पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल इस समझौते को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला बताया। उन्होंने कहा कि इसराइल की अपनी प्राथमिकताएं हैं और वो लेबनन में बफर जोन में तब तक बना रहेगा जब तक आवश्यक होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल होंगे आमने सामने। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: श्रोता FM 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है वेडी गुंजन धर्मशाला और मैं हूँ आपके साथ आपका अपना RJ वेडी जो कि सचिन कपूर। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम में वक्त हुआ है एक अंतराल का, छोटे से अंतराल का, और अंतराल के बाद श्रोताओं अन्य जानकारियों के साथ आपको हम रूबरू करवाएंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ यूँ ही आपके अपने वेडी गुंजन की गूंज के साथ यूँ ही।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
1: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री, 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का, उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में। जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है, सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
4: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: यार, इतनी गर्मी में फंक्शन कौन रखता है? ऊपर से तुम्हारी साइड से इतने सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, आधे तो ऐसे हैं जिनमें पहली बार मिलने वाली हूँ। मुझे इतनी घबराहट हो रही है, तो समझ नहीं आ रहा कि मैं उन सबसे कैसे डील करूँ। लो, ऊपर से ये फाउंडेशन खत्म हो गया, अब मैं अपने मुंह पे क्या लगा के जाऊँ?
7: ताला।
6: क्या?
7: अरे ताला भी खराब हो गया है। काम करते हैं, मार्केट चलते हैं, तुम्हारा मेकअप भी ले लेते हैं और नया ताला भी खरीद लेते हैं।
6: हाँ ठीक है, चलो मार्केट चलते हैं।
7: चलो।

श्रोतों, अंतराल के बाद आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका अपना आरजी वीडियो जो कि सचिन कपूर हूं, और कार्यक्रम में आप सभी का अपना स्वागत करता हूं। आइए जी, कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और जानकारियों का पिटारा जो है श्रोताओं, वो यूं ही खुलता रहेगा, यूं ही चलता रहेगा आपके अपने वीडियो सेट पर। लेके चलते हैं अगली जानकारी की ओर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिमी एशिया में संघर्ष समाप्त करने को लेकर जो लड़ाई समाप्त हुई है उसका स्वागत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इस कदम की जो है वो प्रशंसा की है। श्रोताओं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध समाप्त हुआ है, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो है वो धन्यवाद भी किया है और स्वागत भी किया है। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक समस्याएं जो है वो पैदा हो रही थी, कई देशों में लोगों की जो है वो जान गई। शो तो इन दोनों देशों के बीच जो लड़ाई है उसके बीच में अन्य जो नागरिक हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा जान गई। शो तो साथ ही साथ जो सेना बल हैं, जो सैनिक हैं, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा जान जो है वो गई। शो तो है ना जी, तो ये फैसले से नरेंद्र मोदी जी और इवन की बाकी जितने भी लोग हैं वो भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे इस फैसले के बाद। श्रोताओं, और ये खुशी पूरे भारतवर्ष के लिए भी है, ये खुशी अन्य देशों के लिए भी है। श्रोताओं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कितना नुकसान जो हुआ है वो हो रहा था। इवन की शेयर बाज़ार में भी जो है वो अब सुधार होगा, अन्य चीज़ों में भी जो है वो सुधार होगा। श्रोताओं है ना जी, तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और अन्य जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। श्रोताओं, हर पंचायत में विकास पर खर्च होंगे 1 करोड़ रुपया। जी, मंडी में ग्रामीण विकास मंत्री का खुलासा, 3373 पंचायतों को मिलेगा 37,774 करोड़ रुपया। हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में श्रोताओं चुनावी बेला जो है वो ख़त्म हुई है। श्रोताओं, और सुक्कू सरकार ने भी पंचायतों में विकास के कार्य को पूरा करने के लिए धन का प्रावधान कर दिया है। राज्य सरकार हिमाचल की हर पंचायत में विकास कार्यों के लिए करीब 1 करोड़ रुपया मुहैया करवाएगी। राज्य के 3,773 पंचायतों में विकास कार्यों के लिए कुल 3,774 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। श्रोताओं जी, बिल्कुल आप सभी भी इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी नई पंचायतें बनी हैं, जितनी भी पंचायतें हैं, राज्य सरकार हिमाचल की हर पंचायत के विकास कार्य के लिए जो है वो करीब 1 करोड़ रुपया जो है वो मुहैया करवा रही है। मंडी में चुने हुए प्रधान और उप प्रधानों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाने के साथ ही पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने खुलासा किया कि हिमाचल की हर पंचायत में 5 साल के भीतर करीब 1 करोड़ रुपया विकास कार्य पर जो है वो खर्च किया जाएगा। श्रोताओं, पंचायती राज मंत्री ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2026-27 से 30-31 तक आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में पंचायतों के माध्यम से विकास कार्य पर लगभग 3,774 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। इनमें से इस वर्ष लगभग 481 करोड़ रुपया प्रदान किया जाएगा। श्रोताओं, मंडी जिला को आगामी 5 वर्षों में इसमें लगभग 429.11 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। जी बिल्कुल श्रोताओं, और पंचायत में बेहतर काम करने वाले चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सरकार भ्रमण करवाएगी। श्रोताओं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी में शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित प्रधान और उप प्रधान से कहा है कि बेहतरीन कार्य करने वाले पंचायत प्रतिनिधियों को जो है वो एक्सपोजर विजिट पर भी जो है वो ले जाया करेंगे। श्रोताओं, हिमाचल की सभी पंचायतों में पहली बैठक 27 को। हिमाचल प्रदेश की सभी पंचायतों में 27 जून को जो है वो पहली बैठक होगी। 27 जून को विधित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक आयोजित की जा रही है। श्रोताओं, और पेयजल
स्वच्छता, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, पर्यावरण संरक्षण एवं नशा मुक्त को अपनी प्राथमिकताओं में अवश्य शामिल करें। राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों को पात्र लोगों तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान दें। जानकारियों का पिटारा यूं ही चलता रहेगा, गीत संगीत भी यूं ही चलते रहेंगे, श्रोताओं और पिटारा जो है वो भी यूं ही खुलता रहेगा। ये गीत आप सभी का, मुझे ये लगता है ये गीत जो है वो बहुत ही प्यारा गीत है, श्रोताओं कि चलते रहे इश्क में जो है वो डूब जाते हैं या कुछ कर जाते हैं, है ना। तो चलिए आप सभी को लेके चलेंगे श्रोताओं कार्यक्रम के इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, यूं ही बने रहिएगा आपके अपने रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर। आइए तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारियों के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। आदेश में नशा वृत्त को रोकने व नशे की मांग को कम करने की दृष्टिगत जिला कल्याण अधिकारी कांगड़ा ने बताया कि सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग की ओर से नोडल विभाग कार्यशील है, जिसका उद्देश्य आम लोगों को नशीले पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जो है वो जागरूक और शिक्षित करना है। नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत इस साल को देश भर में विशेषकर शिक्षा संस्थानों में कई तरह की धरातल और ऑनलाइन गतिविधियों आयोजित जो है वो की जा रही है। धरातल पर भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी। श्रोताओं इन पहलुओं का जो उद्देश्य नशीले पदार्थों के इस्तेमाल के खतरों और इसके नुकसानदायक नतीजों के बारे में जनमानस में जागरूकता बढ़ाना है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि 17 जून से 26 जून 2026 तक चलने वाले इस नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नशे के खिलाफ इस मुहिम में शामिल हों और इस मुहिम का समर्थन करते हुए श्रोताओं लिंक दिया है माध्यम से स्वयं को शपथ ग्रहण करें और औरों को भी जो है वो प्रेरित करें। जी बिल्कुल, तो आप लिखिए https://nmba.dosje.gov.in पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और स्वयं को जो है वो आप सभी शपथ ग्रहण करवा सकते हैं और औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। श्रोतों हिमाचल प्रदेश के 3 जिला कुल्लू कांगड़ा तथा शिमला में हिमरंग पुष्टि नाट्य उत्सव का आयोजन जो है वो 18 से 27 जून तक किया जाएगा। ये जानकारी देते हुए निर्देशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश रीमा कश्यप ने बताया कि विभाग के अतिरिक्त हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा एकेडमिक शिमला तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रिपोर्टरी कंपनी दिल्ली एवं ड्रामेटिक सोसाइटी शिमला के संयुक्त तत्वाधन में रिपोर्टरी कंपनी की स्थापन की 60 साल की जो है वो रंगमंच यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। श्रोतों जी बिल्कुल, कार्यक्रम में जानकारियों का पिटारा यूँ ही खुलता रहेगा। श्रोतों जानकारियों का पिटारा जो है वो यूँ ही चलता रहेगा। आइए आप सभी को लेके चलते हैं इस प्यारे से गीत की ओर। जी बिल्कुल, गीत संगीत तो यूँ ही चलते रहेंगे आप सभी के रेडियो पर और आप सभी बने हुए हैं इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ। अन्य जानकारियाँ भी आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। श्रोतों जानकारियों के साथ मैं हमेशा एक संदेश देता हूं कि अपने पर्यावरण को जो है वो सुरक्षित रखिए। देखिए धर्मशाला में लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ मतलब जो उन मुझे लगता है पहला उद्देश्य होता होगा कि मैक्लोडगंज धर्मशाला जाना है ना, स्टेडियम देखना है, तो ये पहला उद्देश्य ज़रूर रहता होगा। लेकिन उसके बाद यहाँ की ठंडी हवाएं जो है वो दूसरा उद्देश्य है कि वहाँ पर जो है वो ठंड होती है, ठंडी हवाएं होती है, फिजाएं होती है, तो उसके लिए हमें पर्यावरण को जो है वो अच्छा रखना है, बेहतरीन रखना है। इसके लिए हम सभी को प्रयास करने होंगे, शतों लगातार प्रयास करने होंगे ताकि हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा रहे, बेहतरीन रहे। चलिए लेके चलते हैं आप सभी को कार्यक्रम में थोड़ी सी और आगे और रूबरू करवाते हैं आप इस प्यारे से गीत के साथ।

0: आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास,
1: तो आप सभी बने हुए इस समय आरजे सचिन कपूर के साथ एक कार्यक्रम सुन रहे हैं, गुड इवनिंग धर्मशाला, आपके अपने रेडियो सेट पर। तो आइए कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं श्रोतों, और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है वो गीत थोड़ा सा लेट रिले हुआ।

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर आप सभी ने ट्यून किया है आपका अपना आरजे वेड़ी जो कि सचिन कपूर और ट्यून किया है वेड़ी गुंजन के माध्यम से। तो बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से सभी सुनने वालों का, सभी श्रोतोगण का। चलिए श्रोतो, एक छोटा सा संदेश जो है वो हम आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहते हैं। सबसे पहले तो अब तक तो आप सभी को यही बताना चाहते हैं कि देखिए वृद्धाश्रम में जो है श्रोताओं, वो केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, हिंसा के केसेस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कभी गोलीकांड नहीं हुआ था, धर्मशाला में गोलीकांड हुआ, इससे आप बखूबी जानते हैं। हालांकि 2-3 महीने पहले की ये बात है, लेकिन फिर भी अपराध जो है वो दिन प्रतिदिन हमारी देवभूमि में, हिमाचल देवभूमि में जो देवी देवताओं के स्थान के लिए मानी जाती है, वहाँ पर जो है वो अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अब वो कहाँ गए भोले भाले से लोग, वो कहाँ गए इतने प्यारे से लोग जो एक दूसरे, जो अपने फ़ायदा ना सोचते हुए दूसरों की सहायता करते थे। तो बस एक छोटा सा संदेश यही देना चाहूँगा कि ज़रूर पैसा कमाना भी ज़रूरी है, ज़िंदगी को चलाना भी ज़रूरी है, सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन एक छोटी

बात बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा जो है वो ज़रूर इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि देखिए किसी का दिल मत दुखाइए। 100 बातों की एक बात कि किसी का दिल जो है वो मत दुखाइए, क्योंकि किसी का भी आप दिल दुखाते हैं श्रोताओं, तो वो उसकी बददुआ जो है वो ज़रूर लगती है। कोशिश कीजिए कि आपकी ओर से किसी का दिल जो है वो ना दुखे, है ना, आपकी ओर से कोई रोए ना, आपकी ओर से किसी का नुकसान ना हो। बस ये छोटी सी 3-4 चीज़ों पर जो है वो हम अपने इस बिजी शेड्यूल में ध्यान देते हैं श्रोताओं, पर हाल लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर। बने रहिएगा।

0: श्रोता एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और 7:45 हो गए हैं। श्रोताओं वक्त हो गया है वेड़ी गुंजन में प्रादेशिक समाचारों का।
1: न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश ने छुआ विकास की नई ऊंचाइयों को। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, 15 जुलाई तक होगा मकानों की गणना का कार्य। और लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर मांगों को लेकर अनदेखी का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों से नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। वे आज फतेहपुर क्षेत्र के तहत कुठंडल में स्थित गुरुद्वारा श्री नानक ज्योति साहिब में श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के शहीदी दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित 5 दिवसीय धार्मिक समागम के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज का जीवन त्याग, तपस्या, सेवा और मानव कल्याण का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने लोगों से गुरु साहिब की शिक्षाओं को जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल ने नवनिर्मित श्री दरबार साहिब भवन का विधिवत उद्घाटन भी किया। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर में मां ज्वाला के पवित्र ज्योतियों के दर्शन किए और विधिवत पूजा अर्चना कर देश की सुख समृद्धि और निरंतर विकास की कामना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मंदिर के इतिहास और परंपराओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि धर्मशाला में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान कानूनी और सुशासन के क्षेत्र में हुए कार्यों और लीगल गवर्नेंस से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में देश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है और विकास की गति लगातार तेज हुई है।
2: धर्मशाला में एक हमारा रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी एक्सेस टू जस्टिस, और पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लीगल फील्ड में क्या क्या रिफॉर्म किए, जैसे ईज ऑफ लिविंग बढ़ी, उसके बारे में भी वर्कशॉप में जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा और उसमें जो एक विकास की रफ्तार थी, गुड गवर्नेंस की ओर देश बढ़ा, ये आगे भी शानदार तरीके से देश का विकास होता रहे, ऐसी हमने ज्वाला जी माता जी से प्रार्थना की।
1: प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना अभियान आज से शुरू हो गया है। इस चरण में मकान सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य किया जा रहा है। ये जनगणना आगामी 15 जुलाई तक संचालित की जाएगी। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर मकान और परिवारों की जानकारी जुटाएंगे। इस दौरान मकान की स्थिति, परिवार की संरचना, पेयजल, बिजली, शौचालय, अनाज और घरेलू उपकरणों की उपलब्धता जैसे 33 आधिकारिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये डाटा देश की विकास योजनाओं के लिए बेहद जरूरी होगा। निदेशालय ने लोगों से इस राष्ट्रीय कार्य में पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है। राज्य वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रदेश के भेड़ पालकों व घुमंतू पशुपालकों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि लंबे समय से बंद पड़े भेड़ पालन परमिट को सरकार ने मंजूरी दी है। मनोज ठाकुर ने कहा कि परमिट की सुविधा मिलने से इस व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि पहले ये परमिट हर वर्ष रिन्यू होते थे, जबकि अब इन्हें 5 वर्ष तक जारी करने की व्यवस्था की गई है।
3: सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को आज दिन तक परमिट नहीं मिले थे और जो भेड़ बकरियां चराना चाहते थे उसके बावजूद भी वो चरा नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए इसमें परमिट की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए इनके पशुपालकों का पंजीकरण होगा और उन्हें शीघ्र परमिट जो है वो जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने जो आदेशित किया है उसके मुताबिक हम 5 साल तक जो है ये परमिट जो है जारी करेंगे और 5 साल के बाद नए सिरे से दोबारा फिर इसकी माल शुमारी के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी परमिट की।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबसे बड़ी
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टौंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने संबंधी मामले को मजबूती से उठाया, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, CR पाटिल और लाभान्वित राज्यों के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। आकाशवाणी शिमला ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। वर्ष 1955 में आज ही के दिन आकाशवाणी शिमला की स्थापना हुई थी। करीब 71 वर्ष के इस सफर में आकाशवाणी शिमला ने अपने श्रोताओं के लिए ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं। आकाशवाणी शिमला के उप महानिदेशक अभियांत्रिकी कश्मीर सिंह ने कहा कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श के साथ 71 वर्षों में आकाशवाणी शिमला ने विश्वसनीय व मनोरंजन से भरपूर जानकारी लोगों तक पहुंचाई है।
4: बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, इस आदर्श के माध्यम से आकाशवाणी ने 71 वर्षों में सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में अथक प्रयासों से कार्य किया है और श्रोताओं को विश्वसनीय और सशक्त तरीके से सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। श्रोताओं, इतने वर्षों में आपने आकाशवाणी परिवार पे अपना विश्वास बनाए रखा है, वो विश्वास आप आने वाले समय में भी बनाए रखेंगे और अपनी फीडबैक आकाशवाणी को समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि हम अपने प्रोग्राम्स को और सुधार सकें।
1: केंद्र के कार्यक्रम प्रमुख अनिल वर्मा ने कहा है कि आकाशवाणी शिमला अपनी स्थापना से लेकर अब तक हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति और विभिन्न बोलियों के संवर्धन और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने श्रोताओं से कार्यक्रमों के संबंध में अपने सुझाव देने को भी कहा है।
5: इन 71 वर्षों के सफर में हमारा ये प्रयास रहा है कि हम जन जन से जुड़े। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको कोई भी हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं उनके बारे में भी लिखें, और यदि आपके कोई सुझाव है कि हम कार्यक्रम में क्या कर सकते हैं इसमें, ताकि आपकी जो इच्छाएं हैं या आपकी जो लगता है कि हमारे को ये कार्यक्रमों में कैसे सुधार किया जा सके, वो विचार हमारे से साझा करें। हम प्रयास करेंगे कि अपने कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बढ़ा सकें।
1: समाचार एकांश के प्रमुख व सहायक निदेशक रितेश कपूर ने कहा है कि आकाशवाणी शिमला ने दूर दराज व जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की है। उन्होंने श्रोताओं का आभार जताते हुए भविष्य में भी जन सेवा की भावना से काम करने का भरोसा दिया।
6: प्रादेशिक समाचार एकांश ने विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करते हुए निरंतर तत्परता, सटीकता और विश्वसनीयता के साथ श्रोताओं का विश्वास अर्जित किया है। मैं प्रादेशिक समाचार एकांश की ओर से सभी श्रोताओं, सहयोगियों और विशेष रूप से युवाओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपके विश्वास और सहभागिता ने ही हमें इस मुकाम तक पहुँचाया है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में भी हम इसी समर्पण, निष्ठा और जनसेवा की भावना के साथ आपकी सेवा में निरंतर तत्पर रहेंगे।
1: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि हिमाचल की संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण व संवर्धन सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज मंडी जिला में 3 दिवसीय जिला स्तरीय सरनोहली मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। राजेश धर्माणी ने कहा कि हिमाचल के सुंदर पर्वतों और प्राकृतिक संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बचाना बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इसके लिए राजीव गांधी वन संपदा योजना के तहत वनों के संरक्षण व संवर्धन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले राजेश धर्माणी ने सेगली पंचायत में बनने वाले ITI भवन का शिलान्यास भी किया और कहा कि इसके लिए 5 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। राजधानी शिमला में पिछले 976 दिनों से अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे दृष्टिबाधितों ने आज सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। दृष्टि बाधित जन संगठन के सदस्य राजेश ठाकुर ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बैकलॉग भर्तियां व आरक्षण देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक दृष्टि बाधितों की जायज मांगे पूरी नहीं करती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
7: मेरा नाम राजेश ठाकुर। जैसे ही दिव्यांगजनों की समस्या आ रही है तो सरकारी विभाग में क्लास फोर का बहुत अधिक मात्रा में हमारा बैकलॉग बचता है। हम चाहते हैं वो भर्ती मेले के थ्रू भरा जाए और पेंशन भी हमारी 5100 रुपए महीने की स्वस्थ दिव्यांगजनों की जाए और प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, उसमें भी बिना किसी कंडीशन से दिव्यांगजनों को लाया जाए और हमें जो सारा पेंशन मिलती थी वो भी 12 महीने से बंद पड़ी है उसे भी तुरंत प्रभाव से लागू किए जाए और यूडीआई कार्ड वो भी लागू किए जाए।
1: शिमला पुलिस ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के खरड़ से मुख्य सप्लायर हरप्रीत उर्फ हैरी को गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 309 ग्राम हीरोइन और 61,900 रुपए नगद बरामद हुए हैं। एएसपी अभिषेक धीमान ने बताया कि इस साल शिमला पुलिस ने अब तक 2.5 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी है, जो पिछले साल से 2.5 गुना ज्यादा है। उन्होंने बताया कि इस मामले से जुड़े बाकी लोगों की भूमिका खंगाली जा रही है। केंद्र सरकार की 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण कार्यक्रम के तहत राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आज कांगड़ा जिला के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्लांट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महत्व का ये प्रोजेक्ट नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इस दौरान सांसद राजीव भारद्वाज और विधायक सुधीर शर्मा भी मौजूद रहे। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि धर्मशाला विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और स्मार्ट सिटी परियोजना सहित कई बड़े विकास कार्य हो रहे हैं। राज्यसभा सांसद व भारतीय ग्रैपलिंग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिकंदर कुमार ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं में खेल प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक ला रहे हैं, जो हिमाचल के लिए गर्व की बात है। सुंदरनगर में उनके सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सहित देश के हर कोने से आने वाले ग्रैपलिंग खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेताओं को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण का रास्ता हुआ प्रशस्त। हिमाचल को हर वर्ष मिलेगी 100 करोड़ यूनिट बिजली। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने सभी सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों से की नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, बीते 12 वर्षों में देश ने छुआ विकास की नई ऊंचाइयों को। प्रदेश में जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू, प्रगणक 15 जुलाई तक घर घर जाकर करेंगे जनगणना का कार्य। और लंबे समय से आंदोलनरत दृष्टिबाधितों ने सचिवालय के बाहर किया प्रदर्शन, सरकार पर मांगों को लेकर अनदेखी का लगाया आरोप। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
0: तो श्रोतों, अब वक्त हो गया है आप सभी से अलविदा लेने का, आप सभी को टाटा बाय बाय बोलने का। जाते जाते यही कहूँगा, बुजुर्गों का आशीर्वाद अपने साथ रखिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आरजे सचिन कपूर को रेडियो गुंजन पर यूं ही सुनते रहिए, सुनाते रहिए। नमस्ते धर्मशाला।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते, और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
3: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुढ़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहा है। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना है।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्यघर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड

0: दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। चीन का हांजो शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
1: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं।

0: कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
1: अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
2: कब से?
1: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
2: अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
1: खांसी?
2: हाँ।
1: इसको तो एक आध महीना हो गया।
2: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही उंगली फेंक रहा है। चलिए चलिए चलिए।
1: डॉक्टर खांसी तो है।
2: देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
1: टीबी?
2: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
1: ठीक है।
2: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए, नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: सुनो आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
4: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
3: मेरी जॉब लग गई है।
4: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
3: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
4: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
3: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया, वो छूट जाएगा।

श्रोताओं, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
3: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: चीन का हांजोउ शहर जानते हैं आप? वहीं पर हमने रचा था इतिहास जब 2022 के एशियन गेम्स में हमने 107 मेडल्स जीते थे, क्योंकि पीछे थी हमारे 1045 खेलो इंडिया सेंटर्स की ट्रेनिंग, कंडीशनिंग कोचेस, डाइटिशियंस और फिजियोस की पूरी फौज। तभी तो पैरालंपिक में भी हमने रिकॉर्ड 29 पदक जीते और हॉकी, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, वुमेन क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस सभी मैदानों में तिरंगा फहराया।
4: एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है, सारे हिंदुस्तान में चेतना भर देता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर पीएम सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
1: एक दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कुछ लोग गलती करने के बाद भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। ना उन्हें पछतावा होता है, ना अपने कर्मों का डर, क्योंकि अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। लेकिन याद रखो पार्थ, कर्म कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता। कर्म का प्रहार सबसे देर से पर सबसे गहरा होता है। समय शांत जरूर रहता है, पर हर कर्म एक दिन लौट कर जरूर आता है, और जब लौट कर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता।
2: यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था, इसकी यही प्रॉब्लम है।
3: कब से?
2: जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से।
3: अरे भाई साहब, क्रिकेट की नहीं, हो आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक।
2: खांसी?
3: हाँ।
2: इसको तो एक आध महीना हो गया।
3: खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही उंगली फेंक रहा है आप। चलिए चलिए चलिए।
2: डॉक्टर, खांसी तो है।
3: देखिए भाई साहब, इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है।
2: टीबी?
3: हाँ। तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए।
2: ठीक है।
3: टीबी किसी को भी हो सकता है, अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है, समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: सुनो, आप जो इतने टाइम से मन्नत मांग रहे थे ना, आज पूरी हो गई।
5: तुम घर छोड़ के जा रही हो?
4: मेरी जॉब लग गई है।
5: अरे तो वही तो मतलब हुआ। अरे तुम्हारी जॉब लगी है, जॉब गांव से बाहर लगी है, तो घर तो छोड़ के जाना ही पड़ेगा ना।
4: आपको पता है कल सुबह ना हमें दिल्ली के लिए निकलना।
5: गुड गुड, जाओ पैकिंग करो।
4: हाँ, मैं पैकिंग कर लेती हूँ।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: किसी के
1: क्या करना है दीदी
0: अरे हो रहना किसी के

रेडियो घर घर पहुंचाए आपकी आवाज, बने आपका अपना रेडियो, हम सबका यही है प्रयास। दुनिया के किसी भी कोने में रहें आप सुन सकते हैं गुंजन रेडियो की आवाज़। सो स्टे ट्यून्ड विद रेडियो गुंजन 91.2 FM।

गुंजंदा हर्ट्स पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और श्रोताओं मैं हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम लेकर भक्ति संगीत आराधना। तो श्रोताओं करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारे से भजन के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना अपनी रेडियो दो शशि के साथ।

हम बोल रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं भक्ति संगीत आराधना।